0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विभिन्नानां राष्ट्राणां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृत्वा विस्तृतं कूटनीतिक कार्यं विहितम्। विदेशमन्त्रालयानुसारं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना तथा तस्य कनाडादेशस्य समकक्षीयेण मार्क कार्नी इत्यनेन च भारत कनाडादेशयोः सम्बन्धेषु सकारात्मकतायाः स्वागतं कृतम्। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यनेन सह मिलित्वा प्रधानमन्त्री श्रीमोदी पञ्चत्रिंशोत्तर द्विसहस्रतमवर्षस्य दूरदृष्ट्यान्तर्गतं भारत यूके सम्बन्धानां प्रगतिं समीक्षितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी G7 शिखर सम्मेलनावधौ UAE अध्यक्षेण शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सहापि मिलितवान्। तथा च पश्चिम एशिया क्षेत्रे चिरस्थायी शान्तिं सुरक्षां स्थिरतां च प्रवर्धयितुं संवादस्य कूटनीतेः अन्ताराष्ट्रिय विधेः सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च सम्मानस्य महत्वम् अधोरेखितम्। केन्यादेशस्य राष्ट्रपतिना विलियम रूटो इत्यनेन सहापि श्रीमोदी मेलनं कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं केन्या च वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षास् दीर्घकालं यावत् सहभागित्वं कुर्वन्ति। जापानदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मिलित्वा श्रीमोदी अवधानं दत्तवान् यत् भारत जापानदेशयोः सम्बन्धः विविधेष् क्षेत्रेष् निरन्तरं सुदृढं भविष्यति। फ्रांसदेशस्य एवियन नगरम् अद्य वैश्विक कूटनीतेः केन्द्रः अस्ति यत् G7 शिखर सम्मेलनस्य महत्वपूर्णे चरणे अस्ति। भारतस्य सहभागिदेशस्य रूपेण सहभागित्वेन सर्वेषां दृष्टिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह बहुप्रतीक्षितायां द्वैपाक्षिक सम्मेलने दृढतया निबद्धः अस्ति यत् अद्य शिखर सम्मेलनावधौ भविष्यति। पञ्चविंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य फरवरी मासे वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अन्तिमवारं मेलनानन्तरं उभयोः मध्ये एतत् प्रथमं मेलनं भविष्यति। अद्यतनस्य संवादस्य समये तौ बहुविधक्षेत्रेष् द्वैपाक्षिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः तथा च परस्परहितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेष् चर्चां करिष्यतः इत्यपेक्षा अस्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनम् अतिरिच्य अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सर्वेभ्यः लाभाय सन्तुलितं सर्वसमावेशं सुस्थिरं च आर्थिकवृद्धेः पुनरुत्थानम् इत्यस्मिन् विषये तथा कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः सुरक्षितं द्रुतप्रभावी उपयोगं सुनिश्चेतुम् इति विषये G7 इत्यस्य कार्यसत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री EU परिषदः अध्यक्षेण एंटोनियो कोष्टा इत्यनेन सह EU अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सहापि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः फ्रांसदेशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अन्ताराष्ट्रिय ऐक्यभावस्य पुनर्निर्माणम् इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसम्बोधितवान्। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीत दर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्तीति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडांगणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिक क्रीडायां फ्रांसदेशेन सेनेगलदेशं 3-1 इति अंकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्वार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा,

0: श्रोता सुन्नुहुँदैथ्यो योग अनि प्राणायाम बारे छोटो जानकारी। भोलि पनि यसै विषयसँग सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू राख्नेछौ र अहिलेलाई भने हामी कार्यक्रम प्रणाम सिक्किमबाट विदा लिन लागिरहेका छौ। विदा दिनुहोस्। नमस्कार। श्रोता, अब भने समय भएको छ समाचारको।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें।

0: suryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की

0: नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रूपये तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: NTA इज कमिटेड।
5: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
4: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन

0: इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डॉनल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan.

जब कहोगे हम तब मिलेंगे, तुम जब कहोगे हम तब मिलेंगे, बस एक शर्त पर, न घड़ी तुम पहनोगे न वक्त हम देखेंगे। तो फिर चलिए, ना मैं वक्त देखूंगी और ना ही आपको बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी आपकी दोस्त नाज वापस आ गई है आपके प्यारे प्यारे ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ने और कार्यक्रम में शामिल करने। करना क्या है आपको एक बार फिर याद दिला दूं, वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन नए लिसनर्स के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है कि fmgoldair@gmail.com पर करना है आपको ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी आप भेज सकते हैं 9868687 पर। इसके बाद क्या भाई, बताना है अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं ये लिखेंगे, और शेर व शायरी या अच्छे विचारों की देखिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और साथ में एक और सरप्राइज है आपके लिए, एक सवाल भी लाई हूँ आपके लिए जिसका जवाब आप

तो गौर से सुनिएगा जनाब, आपको बताने हैं आज उस गीत के बोल जिसमें पंचमदा यानी आर डी बर्मन साहब ने कर दिखाया था एक कमाल का कारनामा। गाने के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए उन्होंने किया था एक झाड़ू और एक कॉम्ब यानी कंघी का इस्तेमाल। तो देर ना कीजिएगा, जल्दी से लिख भेजिएगा उस आइकॉनिक गाने का मुखड़ा और फिलहाल मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा प्रोग्राम का पहला सॉन्ग जिसकी फरमाइश हमें भेजी है कमल बालूजा, मधु, सागर, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही ने सीधा सतना मध्य प्रदेश से।

हवा में खुली है एक प्यारी सी आवाज। ये आवाज है डियर नाज की, जो दिलों को छू जाती है हर बार। शब्दों में जादू, बातों में अपनापन, बस यही है नाज का अंदाज। माइक खुलते ही जैसे हवा में मीठा पन घुल जाता है, आवाज में वो जादू है। हाँ, वही नाज है। शब्दों को सजाकर दिल तक पहुंचाना, ये हुनर सिर्फ उसमें है। हर लफ्ज की नजाकत, हर बात में अपनापन, फ्रीक्वेंसी पर बजती है एक ऐसी धुन जिसे सुनते ही चेहरा खिल उठे है। बातें आम हैं पर अंदाज नाज का खास है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीफ के लिए अनु बड़जात्या जी। सीधा मुंबई से आ रहा है ये मैसेज, और अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं सीधा चंडीगढ़ से। लिखा है कि पूछा जो एक दिन मैंने खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी, पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे, रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। खुला आसमान, चांद तारे, चाहत है तेरी, पर बंद दीवारों को सजाने में तेरा जोर है। सपने देखता है खुली फिजाओं के तू अनेजा, पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पुरजोर है। बहुत ही अच्छी कविता लिखकर भेजी है सतीश अनेजा जी ने, बिमला अनेजा जी के साथ, सीधा चंडीगढ़ सिटी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज आया है हमारे पास होली चौक उत्तम नगर से। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु इसमें शामिल है, और लिख रहे हैं कि यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है ना तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो इनका इलाज पता नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास, जल ही जीवन है। और इस ज्ञान भरे मैसेज के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी है अपने मैसेज में। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं, उत्तम नगर दिल्ली से ही है। क्या ये इन्हीं का मैसेज है? चीटिंग। व्हाट्सएप पे अलग मैसेज, ईमेल पर अलग मैसेज, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए अगला मैसेज शामिल करते हैं। आज के सवाल के जवाब मुझे दिखाई दे रहे हैं हर मैसेज में, लेकिन मैं ढूंढ रही हूं कोई ऐसा मैसेज जिसमें लिखी हो कोई अच्छी सी शायरी या कोई अच्छी सी बात जिसे पढ़कर मेरा भी दिल खुश हो जाए, है ना। तो चलिए, मिल गया है मुझे एक ऐसा ही मैसेज। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है आज फिर उसके मकान की। सभी मजहब के लोग रहते यहाँ खुलूस व अखलाक से, यही तो खासियत है हमारे प्यारे हिंदुस्तान की। क्या बात है। भारत भूषण जी ने ये मैसेज भेजा है, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष के साथ, व्हाइट फील्ड, बेंगलुरु से। बहुत ही प्यारा मैसेज, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अगला मैसेज मैं ढूंढ रही हूं जिसमें लिखी हो कुछ ऐसी ही बात। मधु किरण जी का मैसेज आया है, फरमाइशी गीत लिखकर भेजा है, और लिखा है कि हमें आपकी आवाज पर बहुत नाज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तारीफ के लिए भी। और चलिए फिर, जब तक आप और मैसेजेस भेज रहे हैं, तब तक मैं एक और फरमाइश पूरी कर देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत गाना आने वाला है, पहले ही बता रही हूँ, लता जी की आवाज में है, और सच में मेरा तो फेवरेट है। और कमाल की बात यह है कि दो जगह से इस गाने की फरमाइश आई है, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी, गांव टोरोवाल, नवाशहर पंजाब से, और साथ ही मेरठ कैंट दिग्दर्शन जी और कविता गौड़ जी भी इसी गाने को सुनना चाह रहे हैं। तो चलिए हम सब सुनते हैं मिलकर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
7: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

तो स्वागत है आपका दिल का मेल बॉक्स। चल रहा है प्रोग्राम जहां आपके ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस लगातार मुझे मिल रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूं कि उन मैसेजेस को ज्यादा से ज्यादा तादाद में मैं कार्यक्रम में शामिल कर पाऊं। तो फिर चलिए मैसेज इसी के साथ एक शामिल कर लेते हैं। अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजक्कर साबरी और जरीफ अंसारी जी ने एक मैसेज भेजा है। कहां से? दाऊद सराय सहारनपुर से आया है ये मैसेज। नमस्कार लिख रहे हैं, आदाब कर रहे हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि किसी भी गीत में शामिल हो जाए। तो लीजिए, हमने आपको कर लिया प्रोग्राम में शामिल। और जो मैंने आज का सवाल आप लोगों से पूछा है उसके जवाब तो लगातार मुझे नजर आ रहे हैं। और एक खूबसूरत सी बात भी नजर आ गई है कि वो झील, वो नदियां, वो हवाएं, एक तरफ उसकी आंखें, उसकी जुल्फें, उसका चेहरा एक तरफ, वो मेरे ख्वाबों में आए और मुझे सताए, नींद की खुमारी एक तरफ, उसका सताना एक तरफ। क्या बात है। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब ने भेजा है ये मैसेज, जिसके लिए हम करते हैं आपका शुक्रिया। और अगला मैसेज स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह भी शामिल हैं इस मैसेज में। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से आया है ये मैसेज और साथ ही भेजी है अपनी फरमाइश भी। और चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं ईमेल का और वहां देख लेते हैं कि किस किस ने भेजा है मैसेज। तो चारू जटोलिया जी का मैसेज आ गया है, लिख रही है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। आपका एपिसोड बहुत अच्छा है और साथ ही अपनी फरमाइश लिखकर भेजी है। नागलोई दिल्ली से आया है ये मैसेज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुस्कुराहट की बात एक मैसेज में लिखी गई है कि जिंदगी का वो खूबसूरत लम्हा है मुस्कुराहट, नाज जिसका अंदाज सब रिश्तों से अलबेला है, जिसे मिल जाए वो तन्हाई में भी खुश और जिसे ना मिले वो भीड़ में भी अकेला है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया मैसेज है, बहुत ही अच्छी बात लिखी है सईद अब्बासी जी ने ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से। और एक बड़े ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भी कर रहे हैं जिसे माफ कीजिएगा अभी तो पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि घड़ी कम वक्त बहुत तेजी से दौड़ रही है और कोशिश मैं कर रही हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मैं शामिल कर सकूं। तो जी शंभू दयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा ने भी मैसेज भेज दिया है और लिख रहे हैं कि आपका हर पल खुशियों से भरा हो, प्रस्तुतकर्ता को मेरा नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाखोद राजस्थान से ये मैसेज भेजने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उस गीत की जिसके बोल आप भेज रहे हैं लिखकर लगातार। जी हां, जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर के लिए जिस गाने में पंचमदा यानी आरडी बर्मन साहब ने किया था कमाल का एक्सपेरिमेंट, उसी गाने की आज बात हो रही है। पूरी तरह से सफल इस एक्सपेरिमेंट को कह सकते हैं हम। शुरुआती पिक्चराइजेशन जब आप गाने की देखते हैं तो मशहूर कॉमेडी अभिनेता कश्तो मुखर्जी साहब को देखते हैं आप, जो कि किशोर दा के इशारे पर फुल मस्ती के साथ झाड़ू और कंघी के साथ कुछ म्यूजिक निकाल रहे हैं। और जनाब वो आवाज सच में झाड़ू और कंघी से ही निकाली गई है। सबसे मशहूर, सदाबहार और मजेदार गाना है ये फिल्म पड़ोसन से, जहां सामने वाली खिड़की पर चांद देखा है।

राजेंद्र कृष्ण साहब की कलम ने और आवाज का जादू बिखेरा है किशोर दा ने। बाकी गाना और उसका वो खास म्यूजिकल हिस्सा भी हम सुनेंगे, लेकिन पहले शामिल करेंगे उन सभी लिसनर्स के नाम जिन्होंने इतनी मेहनत से इस सवाल का, इस गीत को ढूंढा उन्होंने और लिखकर भी भेजा हमें मैसेज के जरिए इस गीत का मुखड़ा। तो सबसे पहले जो मैसेज हमारे पास आया वो आज था सत प्रकाश गोयल जी का रोहिणी से, सुनील गायकवाड़ पुणे से, उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से, मधुबाला कोटला दिल्ली से, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, कौशल्या देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ही, और राजकुमार डूंडी फरासी हिसार से, तुलसी मस्कीन दिल्ली से, सईद अब्बासी चौखुंटी बुलंदशहर से, कैप्टन ईश्वर चंद शर्मा द्वारिका नई दिल्ली से, एसके खन्ना विकासपुरी से, और प्रकाश गोगिया जी ने भी भेज दिया है अभी कुछ देर पहले ही सही जवाब दिल्ली से। और चलिए चूंकि वक्त थोड़ी सी मोहलत हमें दे रहा है तो हम और मैसेजेस शामिल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस किस ने भेजा आज के सवाल का सही जवाब। तो जी अभी मुझे नजर आ रहा है मस्कीन दादा जी का मैसेज। लिख रहे हैं कि एक अच्छा और समझदार इंसान वो है जिसके विचार और कार्य समाज में सकारात्मकता फैलाते हैं। मनुष्य की असली पहचान उसके व्यवहार और मूल्यों से होती है। बिल्कुल सही बात है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से आया है ये मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सुशील जी का भी मैसेज आया हुआ है और लिख रहे हैं कि आपने कभी हमारा मैसेज ऐड नहीं किया, ये तो बहुत गलत बात है। देखिए आज कर लिया माफी के साथ। चंदा पठानिया, अंजलि पठानिया, सचिन पठानिया के साथ हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से भेजा है ये मैसेज। उम्मीद है नाराजगी दूर हो गई होगी। प्रकाश गोगिया जी ने लिखा है कि देखिए शायरी तो मुझे आती नहीं, इसीलिए आपकी तारीफ में क्या लिखूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, नमस्कार। बड़ी ही साफगोई से बात कही है आपने, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। दिल्ली से भेजा है ये मैसेज। और सवाल के जवाब की जहां तक बात है तो बोधराज खोरवाल जी ने भी भेज दिया है आज के सवाल का सही जवाब। इसके साथ ही लाल गिरी साहब का भी मैसेज मुझे दिख रहा है। लिख रहे हैं कि प्यार भरा नमस्कार, आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही भेजा है अपना फरमाइशी गीत। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से भेजा है मैसेज। लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी इसमें शामिल हैं। और अब सुनना बनता है वो गाना जिसकी हम बात कर रहे हैं। और हमारी मुलाकात कब होगी ये तो आपको वैसे याद ही होगा। ये गाना आप सुनेंगे, इसके बाद सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, उसके बाद होगी तस्वीर एक खूबसूरत जगह की जिसकी सैर पर निकलेंगे आप मेरे यानी नाज के साथ। फिलहाल इंजॉय कीजिए ये खूबसूरत गीत जो मैंने आपके लिए सेट कर दिया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम कम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डर लायन के साथ

0: त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष में 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केन्द्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इसमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान और अमरीका और इसराइल के सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। यह मैच ब्रिटेन के लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life. Highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia, Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Union Home Minister Amit Shah has paid tributes to the third Sarsangh Chalak of the Rashtriya Swamsevak Sangh, Bala Saheb Deoras, on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said that Bala Saheb Deoras dedicated his life to national service, social harmony and the character building of the youth, and considered untouchability to be the greatest curse. Lok Sabha Speaker paid tributes to the

Namaskar, suswagatam, assalamu alaikum and have a grand welcome by me, aapki host aur ghumakkar dost, Naz. Tune kiya hua hai aapne Akashwani Delhi ka FM Gold channel 100.1 megahertz par aur jahan ke studio ki ghadi mein is waqt टाइम हुआ है 11:11 और 25 सेकंड्स एंड एज यू नो ऑलरेडी ये समय है सैर सपाटे का क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का तो खूबसूरत गानों से सजी तस्वीर की आज की प्लेलिस्ट के साथ मैं तो हूँ पूरी तरह से तैयार लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ पूर्वोत्तर भारत शिवालिक पहाड़ियों पर लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर जाएंगे और करेंगे एक खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर जहाँ की सड़कों को छूते हैं बादल और हरे भरे पहाड़ हर मोड़ पर दिखाते हैं एक नया और खूबसूरत नजारा पैराडाइज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत का स्वर्ग जिसे कहा जाता है और नाम क्या है इस जगह का वो मैं नहीं बल्कि आप ही मुझे बताएंगे कहां कैसे ये आप जानते हैं पर फिर भी याद दिला रही हूँ fmgoldairdelhi@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे 9868687535 पर

0: बस बेटा, ये जगह तो कश्मीर लग रही है कुछ कुछ।
1: नहीं, माफ कीजिएगा गौरी शंकर जी, ये जगह कश्मीर बिल्कुल भी नहीं है।
0: सुदर्शन मुखी जी ने भी नाम गेस करने की कोशिश की है, शिलोंग लिखकर भेजा है। माफ कीजिए जनाब, कुछ कुछ सही है आप। नॉर्थ ईस्ट में है शिलोंग, लेकिन आज की तस्वीर शिलोंग की नहीं है। और साथ ही एक मैसेज और आया है महेश अग्रवाल जी का, लिख रहे हैं कि सवाल का जवाब दिया है लेकिन मेरा ईमेल शामिल नहीं होता है। कोई बात नहीं, मैं शिकायत नहीं करता, शिलोंग ही गेस कर रहे हैं, माफ कीजिए शिलोंग सही जवाब नहीं है। और एक जवाब आया है अभी अभी, अनु बड़जात्या जी ने लिखा है सिक्किम। बहुत करीब हैं आप, जी हाँ, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक चल रही है आज आप मेरे साथ। और कैसे पहुंचना है वहां तक, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो बाय एयर आप अगर जाएंगे तो लैंड करेंगे बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि यहां से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। और यहां से आप बाय हेलीकॉप्टर सर्विस या फिर बाय रोड टैक्सी या फिर कैब के जरिए भी गैंगटॉक तक पहुंच सकते हैं। बाय ट्रेन आने के लिए आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी, जहां ट्रेन से उतरने के बाद आपको आराम से प्राइवेट या शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है गैंगटॉक के लिए। और बाय रोड, खूबसूरत रास्तों और नजारों को निहारना है तो भाई पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से NH10 पकड़ लीजिए और सीधा पहुंच जाइए गैंगटॉक, जिसके लिए डिस्टेंस आपको कवर करनी होगी लगभग 115 किलोमीटर। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना और फिर जब वापस आएंगे तो मुझे है आपको बताना कि किस मौसम में चाहिए आप

देखिए, वैसे तो साल भर ही गैंगटॉक का मौसम बढ़िया रहता है, लेकिन मार्च से जून के बीच अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको मौसम बेहद मस्ताना और सुहाना ही मिलेगा। खिलते हुए फूलों की घाटियां आप इस मौसम में यहाँ देख पाएंगे, और इसके बाद मॉनसून में आप चाहें तो भी गैंगटॉक की सैर कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आसमान साफ रहता है और दूर मौजूद बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां आपको साफ साफ नजर आती हैं। अच्छा, गैंगटॉक, इस जगह को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं। स्थानीय लोग इसे गांगटॉक या गंगटोक कहते हैं। तिब्बती और सिक्किमी भाषा में गंग का मतलब होता है पहाड़ और टोक का मतलब होता है चोटी, तो मतलब हुआ पहाड़ी की चोटी। और बस वहीं तो पहुंच गए हैं आप मेरे यानी नाज के साथ। बेमिसाल ब्यूटी और बादलों की लुका छुपी के चलते इस शहर को बादलों का शहर भी कहा जाता है। और क्या कुछ खास है यहाँ गैंगटॉक में, जानेंगे इस अगले ट्रैक को सुनने के बाद।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं मेरे यानी नाज के साथ और ट्यून किया है आपने आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम और उसकी राजधानी और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है गैंगटॉक, जहां की सैर पर हम निकले हैं। साल 1840 में एंचे मठ के निर्माण के बाद गैंगटॉक एक बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में भी मशहूर हुआ और फिर साल 1894 में यहां के शासक चोग्याल थोतोब नामग्याल ने इसे सिक्किम की राजधानी बना दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये तिब्बत के ल्हासा और कोलकाता के बीच व्यापार के लिए एक अच्छा और बेहतर पड़ाव बना रहा और फिर साल 1947 में भारत की आजादी के बाद सिक्किम में गैंगटॉक को अपनी राजधानी बनाए रखा और एक स्वतंत्र राजतंत्र बने रहने का विकल्प चुन लिया।

चारों ओर आपको यहाँ घने वन मिलेंगे जिनमें चिनार, बर्च, ओक और एल्म के पेड़ भरपूर दिखाई देंगे। ऑर्किड फूलों की दुर्लभ किस्में आप यहाँ देखेंगे। सूरजमुखी, गेंदा जैसे फूल भी आपको यहाँ हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे, जो दिल खोलकर आपका स्वागत करेंगे।

देखिए, किशोर दा को सुनने के लिए भले ही आप रुक जाएं, लेकिन गैंगटॉक के सफर पर आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यहाँ यानी गैंगटॉक में आपके लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले आप पहुंचिए इस शहर के दिल यानी एमजी रोड यानी महात्मा गांधी रोड, जो कि यहाँ की सबसे साफ सुथरी जगहों में से एक है। यहाँ तक कि वाहनों का आना जाना भी यहाँ मना है। जी हाँ, सनसेट के बाद इस जगह की बात ही निराली है, क्योंकि चढ़ती शाम के साथ यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी जगमगाने लगती है।

और उस रोशनी में यहाँ की साफ सुथरी सड़कें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके बाद आप आइए समरसा गार्डन, जहाँ रंग बिरंगे फूल आपका दिल खुश कर देंगे। बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से आप यहाँ पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट देखेंगे। एक तरफ विदेशी पौधे तो दूसरी तरफ देसी पौधों की किस्में आपको नजर आएंगी, और जिन्हें सिर्फ देखने भर से ही आपकी सारी थकान उतर जाएगी।

जी हाँ, हैरान हो जाएंगे आप जब गैंगटॉक की सैर पर निकलेंगे और करेंगे यहाँ होने वाली सारी एक्टिविटीज, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, केबल कार की सवारी या फिर हो बात याक सफारी की। गैंगटॉक में सब कुछ है आपके लिए। और इसके लिए आपको पहुंचना होगा कहाँ? नाथुला पास, जो सिक्किम की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। गैंगटॉक से इसकी दूरी 54 से 56 किलोमीटर के आसपास है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 14,140 फीट। मौसम हमेशा ठंडा ही मिलेगा आपको यहाँ पर। गर्मियों में भी 10 डिग्री से नीचे आप यहाँ का तापमान महसूस करेंगे और सर्दियों में -25 डिग्री -25 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ का चला जाता है। मतलब जबरदस्त स्नोफॉल यहाँ पर होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मेन मोटर मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पहुंचने की इजाजत सिर्फ भारतीय नागरिकों को है और जिनके पास भी सिक्किम पर्यटन विभाग और सेना द्वारा जारी खास परमिट जरूर होना चाहिए।

गैंगटॉक में ही किसी रजिस्टर्ड ट्रेवलिंग एजेंट के जरिए आप ये परमिट बनवा सकते हैं। बुधवार से रविवार तक ये जगह आपके लिए खुली रहेगी, जबकि सोमवार और मंगलवार को ये जगह आम जनता के लिए पूरी तरह बंद रहती है।

0: आई अब तक?
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, प्रस्तुत छ कार्यक्रम नारी संसार।

0: रोड टल
1: रिया,
0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
1: है। तो सुनो,
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाए,
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
1: मंडी,
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: तुम
0: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: ओके, दैट्स इट।
2: यस गीतलाई श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको थियो फिल्म हम तुमबाट कलाकार अलका याग्निक अनि शानको स्वरमा। भने आउनु श्रोता, अन्तिम गीत सुनौ फिल्म जानशीनबाट कलाकार सोनु निगम अनि अलका याग्निकको स्वरमा।

0: हस्त श्रोता कलाकार सोनू निगम अनि अलका याग्निकको स्वरमा रहेको यसै गीतको साथ विभिन्न हिन्दी फिल्मी गीतहरू सुनाउने क्रम यही समाप्त हुँदछ। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 MHz अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता अब प्रस्तुत छ रेणुका पाण्डेबाट हिन्दी भाषा पाठ, जस अन्तर्गत आज हजुरले सुन्नुहुनेछ लिङ्ग और उसके भेद।
1: नमस्कार बच्चों।
2: नमस्कार अध्यापिका जी।
1: आज पुनः हमारी कक्षा में आर्मी पब्लिक विद्यालय के दोनों विद्यार्थी अपराजिता राज और अभिषेक राज उपस्थित हैं। बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में क्रिया के बारे में बताई थी तथा उससे जुड़े कुछ गृह कार्य भी दिए थे, तो आपने अपने गृह कार्य पूरे किए हैं?
2: जी अध्यापिका जी, हमने गृह कार्य पूरे कर लिए हैं।
1: चलो अच्छी बात है, मैं आप दोनों से एक एक करके पूछूंगी। अभिषेक, आप मुझे बताइए कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं?
2: रचना के दृष्टि से क्रिया के दो रूप होते हैं अध्यापिका जी।
1: अपराजिता, आप बताइए कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है?
2: क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है अध्यापिका जी।
1: अपराजिता, काम के नाम बताने वाले को क्या कहते हैं?
2: शायद संज्ञा कहते हैं।
1: नहीं अपराजिता, काम के नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पढ़ाना क्या है? क्रिया है, मतलब मैं क्या काम कर रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्रिया है। अब समझ में आ गई?
2: जी अध्यापिका जी।
1: तो आज की कक्षा में हम लिंग पढ़ेंगे तथा लिंग के भेद के बारे में जानकारियां लेंगे। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि लिंग कहाँ से आता है। अपराजिता, क्या तुम्हें संज्ञा की परिभाषा आती है?
2: जी अध्यापिका जी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
1: शाबाश अपराजिता, आपने संज्ञा की सही परिभाषा दी है। आप लोगों को अच्छी तरह समझना होगा, हमारी जितनी भी संज्ञाएं हैं, सारी संज्ञा का लिंग धारण करवाते हैं। हम सहज रूप से लिंग को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिस शब्द से किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हम फिर से एक बार सुनेंगे, जिस शब्द से किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। मान लीजिए आपके परीक्षा में कोई एक शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें इसका कोई एक लिंग बताइए, और विकल्प में चार लिंग दिए गए हैं, एक स्त्रीलिंग, दो पुल्लिंग, तीन उभयलिंग और चौथा नपुंसक लिंग, या फिर नपुंसक लिंग के जगह पे कोई नहीं। तो याद रखिए, ऐसा जब भी पूछा जाए तो हिंदी भाषा में उभयलिंग या नपुंसक लिंग कट जाते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में हमारे पास सिर्फ दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हम सबसे पहले स्त्रीलिंग की बात करेंगे, तो हम स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा का वह रूप जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि यह संज्ञा स्त्री जाति से है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। एक बार फिर से समझो, संज्ञा का वह रूप जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि यह संज्ञा स्त्री जाति से है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मान लो लड़की, गाय, किताब इत्यादि। तो यहाँ लड़की, गाय, किताब ये तीनों जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में रखा जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं पुल्लिंग की। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के वे रूप जो हमें नर जाति का होना बोध कराती है वो पुलिंग कहलाती है। फिर से सुनो, संज्ञा का वह रूप जो हमें नर जाति का होना बोध कराती है वो पुलिंग कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं लड़का, बैल, दीन इत्यादि। लेकिन ये तो सबको पता है, पर समस्या कहाँ से आती है? हिंदी भाषा में तो दो लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुलिंग। लेकिन हमारे सामने कोई भी शब्द आती है तो हम उसे जाने कैसे कि यह हमारा कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग का है कि पुलिंग का है? यह कभी कभी समस्या सबके सामने आती है कि हमें समझना मुश्किल हो जाता है कि यह स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है। दिन को बताइए कि स्त्रीलिंग है या पुलिंग, या फिर रात को। तो हमें यह जानना है या इनका कोई नियम है जानने का, या फिर रट के ही पता करना होता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुलिंग है। जाने कैसे कि ये हमारा कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुलिंग है? मैं एक तरीका बताती हूँ। हम सर्वनाम की मदद से लिंग पहचान सकते हैं। हम अगर कोई भी सर्वनाम शब्द को लिंग के साथ जोड़ दे तो हम लिंग पहचान सकते हैं कि यह कौन सी लिंग है। जैसे सर्वनाम शब्द है मेरा, मेरी, और यहाँ शब्द है किताब। तो किताब क्या है? किताब संज्ञा शब्द है, और इसमें जब सर्वनाम शब्द जोड़ेंगे तो मेरा या मेरी जोड़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अगर हम किताब में मेरा शब्द जोड़ रहे हैं तो मेरा किताब गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम मेरी किताब, अगर मेरी सर्वनाम शब्द को संज्ञा शब्द किताब में जोड़ते हैं तो मेरी किताब होगा, तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब दूसरा तरीका है विशेषण। हम किसी भी संज्ञा शब्द में विशेषण जोड़ के पता कर सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। मान लो बात एक शब्द है, हमारे सामने बात एक शब्द है, तो अगर हम विशेषण शब्द जोड़े अच्छा या अच्छी, हमारे पास विशेषण शब्द है अच्छा या अच्छी, तो अगर हम बात में विशेषण शब्द जोड़े तो अच्छा बात या अच्छी बात। अगर अच्छा बात जोड़ रहे हैं तो यह गलत हो जाएगी, और अगर अच्छी बात जोड़ रहे हैं तो इससे पता चल जाएगा कि यह स्त्रीलिंग है तो यह सही हो जाएगी, तो ये बात जो हुई वो स्त्रीलिंग हुई। बच्चों आपको समझ में आ रही है?
2: जी अध्यापिका जी।
1: तो हम अभी तक दो तरीके से लिंग को समझने में मदद ले रहे हैं, एक सर्वनाम से और दूसरी विशेषण से। तो ठीक है अभिषेक, आप बताइए कि दिन में हम कौन सा विशेषण जोड़ के कैसे पता करेंगे कि कौन सा लिंग है?
2: जी अध्यापिका जी, अगर हम दिन में भी अच्छा विशेषण जोड़ दे तो पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है, क्योंकि दिन में विशेषण अच्छा जोड़ने पर दिन अच्छा दिन बन जा रहा है।
1: बहुत बढ़िया अभिषेक, आप लोग एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। अब हमारा तीसरा तरीका है क्रिया, और यहाँ पे क्रिया शब्द है होता या होती। तो क्रिया हमारा क्या होता है ये समझेंगे। मान लो मैंने एक शब्द लिया है रात, तो रात होता है कि होती है? अपराजिता आप बताइए।
2: रात होती है अध्यापिका जी, इस प्रकार ये स्त्रीलिंग हुआ।
1: इसी प्रकार आप दिन का लिंग बताइए।
2: दिन होता है, इस प्रकार दिन पुल्लिंग हुआ अध्यापिका जी।
1: बहुत बढ़िया, आप दोनों अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो हम इसे तीन तरीके से समझ लिए कि कौन सा लिंग है, एक सर्वनाम की मदद से, दूसरा विशेषण की मदद से और तीसरा क्रिया की मदद से। लेकिन बच्चों ये उन लोगों के लिए सरल है जो खड़ी बोली हिंदी जानते हैं, लेकिन जो भोजपुरी से हैं या फिर हरियाणवी हैं उन्हें कैसे दिक्कत होगी लिंग पहचानने में। जैसे कुछ ऐसे नाम भी हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, अरावली इत्यादि, जैसे देशों के नाम, जैसे अमेरिका है, भारत है, चीन है, नेपाल है, ये सब पुल्लिंग के अंदर आते हैं। जैसे अनाजों के नाम, गेहूं, बाजरा, जौ, ये भी पुल्लिंग है। इसी प्रकार महीनों के नाम, दिनों के नाम, महासागरों के नाम, विभागों के नाम, जैसे जल विभाग, विद्युत विभाग, आपूर्ति विभाग पुल्लिंग के अंदर आते हैं। ग्रहों और नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं। पर क्या पृथ्वी भी पुल्लिंग में आएगा अपराजिता?
2: नहीं अध्यापिका जी, पृथ्वी तो उपवाद है इसीलिए स्त्रीलिंग में आएगा।
1: हाँ, पृथ्वी अपवाद है इसलिए स्त्रीलिंग में आएगा। बहुत बढ़िया अभिषेक, पेड़ों के नाम पुल्लिंग में आएंगे कि स्त्रीलिंग में?
2: स्त्रीलिंग में आएंगे अध्यापिका जी।
1: नहीं अभिषेक, पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं। अच्छा, एक और तरीका पुल्लिंग पहचानने का, जिस शब्द का अंत आकारांत, इकारांत या उकारांत से होता है वे पुल्लिंग में आते हैं। एक बार फिर से समझिए, जिस शब्द का अंत आकारांत, इकारांत या उकारांत होता है वे भी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे जग, जीव, संसार, तन, धन इत्यादि। इसी प्रकार प्रायः रत्नों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। लेकिन ध्यान देना, मैं बोली हूँ प्रायः रत्नों के नाम, प्रायः मतलब 95%, ना कि 100%। जैसे हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मूंगा, मोती, सोना, पीतल, तांबा इत्यादि। इन शब्दों में नीलम स्त्रीलिंग है। लेकिन क्यों स्त्रीलिंग है ये ध्यान रखना, नीलम एक लड़की का भी नाम है, लेकिन नीलम अगर किसी लड़की का नाम है तब वह स्त्रीलिंग में आएगा। लेकिन नीलम अगर किसी रत्न में आता है, किसी रत्न का नाम हुआ, तो वह पुल्लिंग में आता है। कुछ प्राणियों के नाम पुल्लिंग होते हैं तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग में गरुड़, बाज, पक्षी, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश इत्यादि। एक बार फिर से सुने, पुल्लिंग में गरुड़, बाज, पक्षी, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश इत्यादि। स्त्रीलिंग में चील, जू, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना इत्यादि। ये दोनों केवल या तो पुल्लिंग में ही रहेंगे या तो स्त्रीलिंग में ही रहेंगे। अगर हम इनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाए तो नर तथा मादा शब्द जोड़ के लिंग में बदल सकते हैं। अगर हम इन शब्दों का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाए तो नर या मादा शब्द जोड़ के हम इनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बना सकते हैं। अब मैं आप दोनों से पूछूंगी, अपराजिता
2: जी। अध्यापिका जी, हम अवश्य जवाब देने की कोशिश करेंगे।
1: ठीक है, तो आप मुझे मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताइए।
2: मगरमच्छ का स्त्रीलिंग मादा मगरमच्छ होगा अध्यापिका जी।
1: अभिषेक, आप बताइए कि गरुड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा?
2: गरुड़ का स्त्रीलिंग मादा गरुड़ होगा अध्यापिका जी।
1: बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग बहुत ही सही तरीके से लिंग समझ रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को लिंग समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
2: जी अध्यापिका जी, आज हमें लिंग को समझना बहुत ही सरल लगा तथा हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा बताए तरीके से हम अब लिंग निर्णय में कभी भी गलती नहीं करेंगे।
1: तो आज हम अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं तथा आकाशवाणी गांतों की तरफ से मैं रेणु पांडे विदा लेती हूँ। धन्यवाद बच्चों।
2: धन्यवाद अध्यापिका जी।
0: श्रोता यतिन्जल प्रस्तुत थियो रेणुका पाण्डेबाट हिन्दी भाषा पाठ। यो आकाशवाणी गान्तोक हो।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभदेव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त। लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
2: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
3: दादी जी।
4: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
3: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
4: हाँ पूछो।
3: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
4: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
3: अच्छा।
4: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
3: अच्छा।
4: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए।
3: ओ,
4: उस समय

0: दादी जी
1: हुँ?
0: लड़ाई में कौन कौन थे?
2: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
3: बड़े बहादुर थे ये।
2: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी
1: हुँ?
0: दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
3: वो कहाँ के रहने वाले थे?
2: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
3: अच्छा।
2: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
2: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
3: दादी
2: हुँ?
3: उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
2: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
3: अच्छा दादी जी
2: हुँ?
3: लेकिन वो हीरो कैसे बने?
2: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
2: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
2: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
4: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
3: दादी फिर क्या हुआ?
2: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
4: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
5: खुद करनी होगी।
0: फिर क्या हुआ दादी?
2: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
2: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।

0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
1: हमें कुछ करना पड़ेगा,
0: उसके बाद क्या हुआ? बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
2: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
3: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
2: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े,
3: बिल्कुल नहीं होने देंगे।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
2: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
4: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
5: मंगल पांडे
6: जिंदाबाद,
5: मंगल पांडे
6: जिंदाबाद,
5: इंकलाब
6: जिंदाबाद,
5: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
7: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
8: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
4: अरेस्ट करो,
7: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
3: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे।
8: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: come, balde come, ki kona manta hai, durant hospital bhejo!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता, जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भईल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भईल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भईल, जननी के भेंट परान भईल, आजादी का बल बेदी पा मंगल पांडे बलिदान भेल, जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
7: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
8: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
9: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
8: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं।
10: तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
9: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
10: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना। मैं

0: पूजा करने जा रही हूँ।
1: अच्छा माँ।
2: माँ माँ
1: लो देवेंद्र भी आ गया।
2: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
0: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
1: ठीक है माँ।
2: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
1: ठीक है मैं अभी लाती हूँ।
2: ये देखो दीदी ये मारा।
1: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
2: अरे ये मारा।
1: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
2: बंद कर दिया होगा। ये तो देखो।
1: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
2: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
0: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
1: अच्छा माँ कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
3: हमें अंदर आने दो।
1: अरे क्यों?
4: ए लड़की रास्ते से हट जा।
1: क्या काम है? ठहरो ठहरो मैं माँ को बुलाती हूँ।
3: लड़की
1: माँ
3: ये चाकू देख रही है ना?
4: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
1: अरे
4: वरना बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
1: माँ
4: हट रास्ते से।
1: माँ क्या हुआ? देखो जल्दी
0: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
3: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
1: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
3: ये चाकू देख रही है ना?
1: छोड़ दो। मुझे मत मारो, कुछ मत करो।
0: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है। छोड़ दो।
4: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
0: अरे मेरे बात को छोड़ो,
1: मेरी माँ को छोड़ो।
3: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
4: सुनो इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
0: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
1: देवेंद्र।
2: हाँ दीदी।
1: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
2: हाँ।
1: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
2: अच्छा।
1: हेलो।
5: हाँ बेटा बोलो।
1: पापा पापा
5: हाँ बोलो बेटा।
1: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसा है।
5: कौन घुसा है?
1: माँ को बहुत मार रहे हैं।
5: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
1: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
2: अच्छा।
1: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुसा है। बचाओ
6: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
7: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को।
8: वाह वाह वाह,
7: कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
0: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
7: देखो ना सबकी जान
6: बच्ची। अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार।
10: उमंग उमंग उमंग उमंग।
11: हेतेन्जल प्रस्तुत थियो एनसीईआरटी माथि एक प्रायोजित कार्यक्रम अवकेशनमा आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ विविध भारती सेवाहरू।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें। और इस फिल्म में नायक नायिका किशोर कुमार और मधुबाला इस गीत में नजर आते हैं और हमारे साथियों ने तो इतनी सारी गाड़ी चला दी है सवालों की, उन्होंने तो हमसे ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। भाई एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो, जो गीत हमने सुनवाया उसका अर्थ ये थोड़ी था कि आप हमसे सवाल करते ही चले जाएं। देखिए आपके पास तो जवाब देने का ऑप्शन उपलब्ध है और आप देते रहते हैं जवाब। हमारे एक साथी ने कहा कि अज्ञात फिल्म ने बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में छोड़ दिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं और सवाल पूछते हैं तो शब्दों से ज्यादा हमारी आवाज का लहजा और आंखों की चमक मायने रखती है। सवाल चाहे जो भी हो, अगर उसके पीछे सच्ची आत्मीयता है तो सामने वाला अपनी हर फिक्र भूलकर मुस्कुरा देता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी के दिए सवाल जवाब बहुत कठिन लगते हैं, न तो सवाल समझ में आते हैं न जवाब। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनके घर में एक छोटी बेबी है, बच्ची है उनकी, और उनकी या उनकी नाती पोती वो हो सकती हैं, और वो जब सवाल पूछती हैं सवाल पर सवाल तो उस नन्ही परी के सवालों के जवाब देते देते थक जाते हैं, लेकिन उसके सवाल बिल्कुल भी नहीं खत्म होते। लेकिन इसी तरह से तो वो अपने जान पाएंगी इस दुनिया को और आसपास के लोगों को। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बेसिर पैर बेतुका सवाल पसंद नहीं आते, परिचर्चा के विषय वस्तु से दूर अवांछनीय सवालों से इन्हें चिढ़ है। वहीं हमारे एक साथी तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, ये सवाल जरा छोटा सा ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब आप इबारत तैयार करते हैं तो उसमें बहुत कुछ सोच के आते होंगे, पर प्रोग्राम शुरू होता है तो सब कुछ अलग हो जाता है संदेशों के साथ, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? तो भाई हम तो यही कहेंगे कि आप सभी का साथ मिलता है तो जो भी हम सोच कर आते हैं उससे ज्यादा अच्छी हो जाती है सोच, और कार्यक्रम में आप सभी का सहयोग जब मिलता है तो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होता जाता है। तो आप सभी के सहयोग से ये सवाल जवाब जो हो रहा है, या कहें कि ये कार्यक्रम जब होता है तो आपका सहयोग भी पूरी तरह से होता है, तो 50-50% पार्टनरशिप पे चल रहे हैं हम, ऐसा कह सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, इसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए, और वक्त इतना सटीक हल उसका निकाल कर जवाब देता ही है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही है कि नाइट में भी आपकी ड्यूटीज होती हैं क्या, जैसे रेलवे में होती हैं? और हमारे एक और साथी पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन तय करते हैं कि कौन आएगा सुरीला सफर में? तो ये विविध भारती से जुड़े जो भी सवाल आपने पूछे उसका जवाब तो आपको यहीं आकर मिलेगा, तो अगली बार जब आप आए तो यहाँ की सैर पर आइएगा और आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये सवाल भी अक्सर जहन में आता है कि जीवन एक सफर है तो मृत्यु क्या है? भाई बहुत ही गहन सवाल है ये, और इसके बारे में जवाब ढूंढते ढूंढते कई दार्शनिक बहुत सी बातें लिख भी गए हैं, पर इस पे तो सोचना बहुत ही गहराई से सोचना पड़ सकता है। वहीं हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि नए जोड़ों के साथी अंतरंगता की बातें अक्सर पूछते हैं, वो नहीं पूछने चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो सवाल ये है कि शादी के लड्डू ही क्यों, कड़वा करेला भी तो हो सकता है। तो भाई नेक्स्ट टाइम जब आपके आसपास किसी की शादी हो तो आप कहिएगा कि इस बार लड्डू ना बनाएं और बनाएं करेला, देखें आपकी बात अगर वो मानते हैं तो फिर इस कहावत को हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि शादी में तो भाई लड्डू वड्डू ही मिलते हैं, मिठाई मिलती है, करेला तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। चलिए तो अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत में आवाज किसकी है ये तो आप बताएंगे ही, साथ ही आप बताएंगे फिल्म का नाम भी।

जवानी दीवानी फिल्म का ये गीत आपने सुना। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कोई भी बच्चे जब आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं कि मम्मी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्या पापा, वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि एक सवाल पूछ ही लेता हूं, जन्म के समय आत्मा आई थी या देह परिवर्तन के समय आत्मा ही जाती है, तो ये सवाल है कि मन आया किधर से? और इस सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं पूछनी चाहिए, और इस फहरिस्त में हमारे एक साथी ने उन्होंने अंग्रेजी में अपना जवाब लिखा है, तो उसे हम हिंदी अनुवाद करके आपको सुनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को भी, किसी भी युवा बच्चे जो होते हैं, लड़के होते हैं, उनके माता पिता से या उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो शादी कब करने वाले हैं, या जो नई नई इनकी शादी होती है, नविवाहिता होती है, उनकी माओं से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी बेटी कब माँ बनेगी, या फिर उनकी शादी, किसी की शादी से संबंधित सवाल नहीं पूछना चाहिए, और अगर उन्हें बुलाया गया है तो भी किस तरह से बातें नहीं पूछनी चाहिए कि कभी भी कोई अगर कोई गर्भवती भी है तो उससे भी नहीं पूछना चाहिए कि गुड न्यूज कब दे रहे हैं, और इस तरह की बातें क्योंकि परेशान करती हैं जिनको भी, जिनकी भी संबंधित होती हैं परेशानी, उन्हें परेशान करती हैं, इसलिए आपको इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए, वो कह रहे हैं कि एक सवाल पूछ रहा हूं कि आसमान में उड़ने वाले बादल इतना सारा पानी कैसे लेकर उड़ सकते हैं, जिनमें पानी के टैंकर होते हैं जिसमें शहर और गांव में बरसते हैं और पूरा गांव शहर तर बतर हो जाता है। विज्ञान का सवाल है, जवाब हो तो जरूर देना। भाई इसका जवाब इतना बड़ा है कि इसका जवाब तो आपको विज्ञान की किताब का एक पन्ना भेजकर ही हमारे साथी दे देंगे, तो जिस भी साथी के पास वो पन्ना है वो उन्हें जरूर भेजें। और हमारे एक और साथी कह रही हैं कि कौन सा सवाल खुद से पूछना चाहेंगे, उसमें उन्होंने पूछा है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही हूं, इस तरह के सवाल वो पूछना चाहती हैं खुद से। तो हम उन्हें बस ये जवाब देना चाहेंगे कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए और खुद को लेकर थोड़ा नर्म पड़ना चाहिए, तो इससे आप जरूर अपने कामों को पूरी तरह से कर सकेंगे। और खुद को जज करना कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए और अपने आप ये सोचिए कि आप जरूर कर पाएंगी उन कामों को, शायद थोड़ी थकान हो, तो इस तरह से इस जवाब से शायद आपको कुछ आराम मिले और कुछ आराम आपको इस गीत से भी मिल सकता है। तो सुनिए ये गीत और हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और लिखा किसने है।

0: चंद्रसेना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें बात हो रही है सवालों और जवाबों की। बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं मिलते, या बहुत से ऐसे सवाल जिनसे हम चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे ही ना, या जिनके जवाब हम देना ही नहीं चाहते, और कुछ ऐसे सवाल जो हम खुद से पूछना चाहते हैं। इन सभी के बारे में आपने लिखा है। हमारे एक साथी कहते हैं कि मैं क्या किसी के सवाल का जवाब दूंगी, मेरी तो फोन की बैटरी जवाब दे चुकी, बिजली धोखा दे गई और फोन की मानो चंद सांसे गिनती की रह गई और अन्य कोई साधन भी उपलब्ध नहीं कि फोन चार्ज हो सके। बस अब श्रवण कुमार बनेंगे वक्ता बाबू तो बनने से रहे, सुनेंगे रेडियो सेट पर शेष प्रोग्राम। शुक्र है रेडियो की बैटरी अपने पूरे शबाब पर है। चलिए अच्छी बात है कि आप कार्यक्रम में किसी भी तरह से शामिल तो हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्कूल के समय में गणित का सवाल जब सबसे खतरनाक लगता था, आठवीं क्लास में शून्य नंबर मिले थे और बहुत पिटाई हुई थी। उसके बाद पूरी नौकरी में गणित का ही काम करना पड़ा, लेकिन गणित आज भी नहीं आती। भाई तो हमारा सवाल तो यही कि गणित नहीं आती, फिर भी गणित का इतना काम कैसे कर लेते हैं आप। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज आपके सवाल जवाब ने बचपन में पिताजी की मार याद दिला दी है। जब वो गणित पढ़ाते थे तो सवाल का जवाब पता होता था, लेकिन उनके आगे जुबान नहीं खुलती थी। जब एक थप्पड़ पड़ते तो झट से जवाब देता था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब कोई घर का सदस्य बाहर जा रहा हो किसी महत्वपूर्ण काम से, तो कहां जा रहे हो इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। और हमारी कौर साथी ने कहा, अगर मैं खुद से सवाल करती हूं कि मैं सबके लिए जीती हूं, खुद के लिए कब जी पाऊंगी जिसमें कुछ पल मेरे बिल्कुल अपने हों, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। भाई इस इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कुछ वक्त अपने लिए निकालने लगेंगे तो वाकई घर के सदस्यों को भी इसकी आदत होती जाएगी और आप वाकई अपने लिए वो समय निकाल पाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आप इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगी, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये गीत। और ये गीत

बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और अर्चना की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव वर्मन का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की भारत एक ऐसे तथ्य को उजागर करती है जिसकी तलाश में सारी जिंदगी हम व्यतीत कर लेते हैं और मिलकर भी हमें वो चीज नहीं मिलती। हम पूरी जिंदगी या तो अपने सवालों के लिए सही जवाब ढूंढते रहते हैं या फिर मिले हुए अनुभवों को सही साबित करने के लिए नए सवाल खड़े करते रहते हैं। राहों में इन सवालों का भटकना भी इस सफर का एक खूबसूरत हिस्सा है। सवाल और जवाब के ताने बाने से इंसानी जहन की कश्मकश को बड़े ही सरल मगर गहरे शब्दों में पिरोया है। वहीं मारिक और साथी कहती कि सवाल जवाब तो जब तक जीवन है चलते ही रहेंगे। हाँ, कुछ सवाल के जवाब हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं। दरअसल कभी कभी किसी सवाल का जवाब ना मिले उसी में बड़ी खूबसूरती छिपी होती है। हर सवाल का जवाब मिल जाए तो जिंदगी में फिर रोमांच ही खत्म हो जाए। जिंदगी के सवाल जवाब को जितनी गंभीरता से लोगे

उतनी ही पीड़ा होगी। जीवन का सबसे निश्चल पक्ष है, जो जैसा है वैसा ही ग्रहण करो, मगर सवाल जवाब भी करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में जिज्ञासा बनी रहती है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की इबारत जीवन केवल सवालों और जवाबों का गणित नहीं है। जीवन में कई मुलाकातें, घटनाएं और रिश्ते बिना किसी पूर्व योजना के बनते हैं। कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, कई उत्तर समय के साथ स्वयं मिल जाते हैं। इसलिए हर बात को तर्क और उत्तरों में बांधने के बजाय जीवन के रहस्यों, संयोगों और अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए। एक और साथी कहते हैं, सवालों जवाबों में उलझी जिंदगी आज आखिर मुकाम पर पहुंच चुकी है। तमाम सवाल अधूरे रह गए, जिनके जवाब हमने खोजे ही नहीं और अपनी जिंदगी को तबाह करते चले गए। कुछ मजबूरियां थी जो कह रही थी कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, फिर सवाल जवाब में उलझे तो अच्छा होने के बजाय और बुरा हो सकता था। आज सवाल जवाब की बातें चली तो वो दिन याद आ गए कि एक कंपनी में सर्वे सर्वा था और कुछ लोग बेईमानी में शामिल होने का भरसक प्रयास किए। मैं उनके साथ नहीं गया। आज उन्हीं बेईमान लोगों के हाथों कंपनी की बागडोर चली है और हम सब कुछ छोड़कर घर में बैठ गए हैं। तो ये बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं, जिसमें बहुत सी उनके मन की गूढ़ बातें शामिल हैं। वहीं हमारे साथी का कहना है कि रोज अपने दिल से एक सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी वजह से आज कोई मुस्कुराया। अक्सर जवाब हाँ में होता है, पर कभी कभी ना में भी होता है। तो हमारी कौर साथी ने कहा कि जिस सवाल का टेढ़ा जवाब दिया जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई भी टेढ़ा जवाब देता है, बदतमीजी से बात करता है तो अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहती हैं कि सवाल जवाब के बारे में उन्होंने लिख भेजा है कि जिंदगी वाकई इन कब कहां कैसे की उलझनों से कहीं ऊपर एक अनसुलझा खूबसूरत सफर है। कभी प्रश्न आईना बनकर हमारा असली रूप दिखाते हैं, कभी बादल बनकर मन के आकाश को नया आकार दे जाते हैं। कुछ सवालों को उत्तर चाहिए, पर कुछ सवाल बस महसूस किए जाने के लिए होते हैं। अक्सर इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों की चुप्पी में जीवन की सबसे गहरी सीख छुपी होती है। अतः सवालों जवाबों के अंतहीन चक्र में उलझने के बजाय जिंदगी का असली मजा लीजिए तो अनजानी राहों की खूबसूरती को महसूस करने और हर पल को बिना किसी शर्त के जीने में ही जिंदगी का मजा छिपा है। और अब आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म का है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमरीका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक ही दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर

0: सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमरीका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टेयर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टेयर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए इज कमिटेड।
4: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
5: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाईयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाईयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमरीका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। यह मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: मीडियम वेव 213.67 मीटर को 1,404 किलोहर्ट्जमा यो आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्र हो। साथै यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता यस सुन्नुहोस् हाम्रो लाइभ फोन इन कार्यक्रम सम्बन्धी एक सूचना। आगामी तारीक 19 जून 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 मा प्रसार गरिने ग्रामीण कार्यक्रममा हामी लिएर आउनेछौं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा लाइभ फोन इन कार्यक्रम। विषय रहनेछ योग गरौं निरोगी। सहभागी बनाऊ। यस योग विषय अधिक जानकारी दिन भने हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित रहनुहुनेछ योग प्रशिक्षक श्री रामप्रसाद पौड्याल र यस विषयमाथि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा भए हाम्रो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया। नेताओं ने इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में G7 नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियां में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लायन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 22 ओवर में 2 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने इस मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आने के बाद, उनका सरकार गठन होने के बाद, नॉर्थ ईस्ट को एक देश के मानचित्र में लाने के लिए जो अष्टर लक्ष्मी का वर्णन किया गया है, इसका कई सारे महत्व है। एक तो है जैसे इकोनॉमिकली और सोशली देश के मूलधारा में लाना और नॉर्थ ईस्ट का समग्र विकास को करवाने के हेतु से ये कहा गया है। और इसका जो आउटपुट और इसका जो विजुअली मतलब जितना डेवलप होना था वो दिखाई भी दे रहा है।
1: सर, जैसे आपके राय में पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, उसमें उत्तर पूर्व के विकास में कौन कौन सा प्रमुख उपलब्धियां हासिल हुई है?
0: देखा जाए तो बहुत से ऐसे जगहों पर उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में विकास की गति को तेज हुआ है। विशेष करके जैसे नेशनल हाईवेज का अगर वर्णन किया जाए तो पहले लगभग हाईवेज लगभग 10,900 के करीब किलोमीटर था, अभी ये बढ़कर लगभग 16,900 के करीब हुआ है। तो आप वृद्धि देख सकते हैं कि ये बीते एक दशक में लगभग 50% का ग्रोथ हुआ है। इसी के दौरान से अब देखा जाए तो एग्रीकल्चर और विभिन्न क्षेत्र में उद्यमी क्षेत्र या तो रेलवे के नेटवर्क भी बढ़कर गया है और जितना भी है विकास की गति तेज रूप से बढ़ा हुआ है।
1: सर, भारत सरकार की जो एक्ट ईस्ट नीति ने उत्तर पूर्वी राज्यों को विकास में किस प्रकार से योगदान दिया है?
0: विशेष करके जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट को एक सॉफ्ट पावर और सॉफ्ट पावर को विशेष करके टूरिज्म ड्रिवन और बिजनेस सेंटर और बिजनेस हब और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक बृहद आकार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने के परिकल्पना में ये यथार्थ रूप में अभी देख रहे हैं और इसी हिसाब से अब डेवलपमेंट तो बढ़ा है, इसके साथ साथ में सामाजिक और न्याय विकास की गति में भी फर्क हुआ है। जैसे नॉर्थ ईस्ट पहले थोड़ा स्टेबल नहीं था, पॉलिटिकली अनस्टेबल और इंसर्जेंसी था, पीस को लेकर चर्चा हुआ करता था, अभी पीस को मेंटेन किया है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हम लोग बृहत रूप से देख सकते हैं।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सरकार गठन के बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास के लिए एक अलग सा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके तहत एक नया मंत्रालय ही चालू किया है और ये मंत्रालय कंटिन्यूअसली उत्तर पूर्वी विकास को लेकर जागरूक है और काफी सारे कोशिश कर रहा है, बहुत सारे प्रमुख योजनाएं भी है। सर, पिछले 12 साल को मुद्दे नजर रखते हुए आपको इस मंत्रालय की क्षेत्र की विकास गति देने में क्या भूमिका निभा रहा है, आपका क्या राय?
0: विशेष करके मोदी जी के आने से पहले जो सरकारें थी नॉर्थ ईस्ट को इस तरह से ध्यान दिया नहीं गया था। अब देखा जाए तो उस टाइम का बजट हुआ करता था साल में पूरा नॉर्थ ईस्ट को लेकर लगभग 20,000 करोड़। इसको अभी जो एक अलग मंत्रालय बनाने के बाद डोनर गठन करने के बाद ये जो एक ग्रॉस बजट दिया गया है इसमें इसका वृद्धि बृहत रूप से हुआ है, लगभग 1,05,00,000 करोड़ से ऊपर का जो एक बीतिया अनुदान नॉर्थ ईस्ट राज्य को दिया जा रहा है और क्यूमुलेटिवली अगर विगत के 7-8 साल में देखा जाए तो ये लगभग बढ़कर 8 से 9 लाख का वित्तीय अनुदान विभिन्न परियोजनाएं विभिन्न विकासीय योजनाएं के लिए दिया गया है। और नॉर्थ ईस्ट का जो बात करते हुए नॉर्थ ईस्ट का एक मंत्रालय गठन करने के बाद जैसे सिक्किम का देखा जाए तो अभी भी हाल ही में 360 करोड़ सिक्किम का जो ऑर्गेनिक्स डेवलपमेंट के लिए जो फंडिंग डोनर के थ्रू दिया गया है और इसके अलावा बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट का भी जो गठन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, ये भी एक बृहत योजना है जिसकी तरह से जो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र में थोड़ा गति पकड़ सकता है और इसका बृहत रूप से प्रचार नॉर्थ ईस्ट का होगा, इसको हम मानते हैं।
1: सर, पीएम डिवाइन स्कीम काफी चर्चे में है, सर कुड यू प्लीज हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ पीएम डिवाइन स्कीम जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को मुद्दे नजर रखते हुए?
0: विशेष करके पीएम डिवाइन स्कीम के अंतर्गत लगभग 2300 करोड़ का फंड एलोकेशन हुआ है और इसको लाइनअप किया गया है पीएम गति शक्ति, जिसके कारण से जो सोशियो डेवलपमेंट गैप्स और फंड लार्ज स्केल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के

0: अंतर्गत विशेष करके युवा और नारियों को सशक्त बनाने का एक योजना है और इसके अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स है जिसके अंतर्गत 2500 करोड़ का आवंटन हुआ है। ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। इसमें विशेष करके पेयजल योजना, पावर प्रोजेक्ट है और इसमें टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने की बृहत योजना सरकार ने किया है। इसके अंतर्गत विशेष करके पेयजल और जो नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज इलाके में जो पीने का पानी का जो समस्या था उसको हल हो सकता है और इसके अंतर्गत जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो गति को आगे और ले जा सकती है, ये हम मानते हैं।
1: सर, इसी संदर्भ में जानना चाहेंगे कि 2014 से पहले कनेक्टिविटी, मतलब सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो या हवाई मार्ग हो, कनेक्टिविटी हमेशा एक डिबेटेबल एस्पेक्ट था जहां तक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात होता है। तो सर, 2014 के बाद आपको क्या लगता है सर, कैसे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कुछ कुछ तो नॉर्थ ईस्ट के लिए डेडिकेटेड भी बने हैं, कैसे हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का राज्य में सिक्किम को रखते हुए बाकी भी नॉर्थ ईस्ट का राज्य को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है?
0: कनेक्टिविटी को लेकर एक चिंता था, जैसे नॉर्थ ईस्ट में पहले मानते थे कि कनेक्टिविटी मेजर प्रॉब्लम है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर था, टूरिज्म का प्रोस्पेक्ट था, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का बहुत प्रोस्पेक्ट था, लेकिन यहाँ का एक चिंता था कि ये थोड़ा इली टेरेन और यंग माउंटेन यहाँ का जो टेरेन होने के कारण से कनेक्टिविटी मेजर प्रॉब्लम था। अभी एनडीए और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लगभग 74,000 का निवेश रेलवेज में किया है और इसके अलावा जो उड़ान स्कीम के अंतर्गत विभिन्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर एयरपोर्ट का निर्माण और इसके साथ साथ में रेलवे नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हाईवेज का मैंने जो अभी अभी जिक्र किया था, पहले लगभग 10,900 किलोमीटर था, अभी वो बढ़कर 16,500 के करीब पहुंचा है। तो अभी जितना भी नॉर्थ ईस्ट के अंडर में हाईवेज था, ये सब अभी जो प्रीमियम एजेंसीज जैसे मंत्रालय के अंतर्गत में लाकर ये हैंडओवर किया गया। इसके अंदर में लाने के बाद जो ये हाईवेज का डेवलपमेंट होने के बाद कनेक्टिविटी बूस्ट होने का आसार है और अभी विजिबल चेंजेस भी दिख रहा है।
1: सर, हम लोग ये प्रत्यक्ष किए है कि मोदी सरकार का जो मेन मकसद था उसमें से एक था कि लास्ट रिमोटेस्ट लास्ट आदमी तक सरकारी परिसेवा को पहुंचा देना। तो सर, इसी तहत इसी मुहिम को याद रखते हुए नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम ये सरकार ने लॉन्च किया है। तो सर, ये जो स्कीम NESIDS दैट इज नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, सिक्किम का जो दूर दराज क्षेत्र है, सिक्किम 6 जिले से गठित है सर, जैसे हम सबको पता है, सबसे रिमोटेस्ट जो विलेजेस है उसमें ये दूर दराज क्षेत्रों में ये स्कीम कैसे मददगार साबित हो रहा है?
0: विशेष करके ये स्कीम जो दूरदराज इलाके है, विशेष जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाके, इसको डेवलप करने के लिए और BEDPF फंड के अंतर्गत से ये स्कीम को अलाइन करके बहुत से ऐसा विलेजेस को, विशेष करके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल और रोडवे कनेक्टिविटी और विशेष करके नेटवर्क कनेक्टिविटी में विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसके अंतर्गत अभी विभिन्न ऐसे जगहों का डेवलपमेंट और वहां का मानचित्र बदलने में ये स्कीम बहुत सबसे काम कर रही है।
1: सर, जैसे डिजिटल इंडिया का पहल चला है बहुत दिनों से और डिजिटल कनेक्टिविटी आज के दिन के युवाओं के लिए सिर्फ एक नजरिया ही नहीं पर एक पेशा भी, मतलब अल्टरनेट प्रोफेशन भी होके रखा है और बहुत सारे यंगस्टर्स सिक्किम, इन सिक्किम एंड मे बी इन अदर स्टेट्स डिजिटल मीडियम को, बाकी सारे क्षेत्र को डिजिटल मीडियम को यूटिलाइज करते हुए उनको प्रोफेशन की तरह ले रहे। सर, ये जानना चाहेंगे कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी और डिजिटल समावेशन को बढ़ाने के लिए सिक्किम सरकार और केंद्र सरकार कैसे एकजुट होकर काम कर रहे हैं?
0: विशेष करके डिजिटल जो रेवोल्यूशन अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, जैसे डिजिटल भारत नीति कार्यक्रम और डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन के अनुरूप अभी ऐसे जगह पर, दूर दराज जगह पर कनेक्टिविटी का जिस जगह पर समस्या था, BSNL के थ्रू लगभग 1 लाख से ऊपर इंडिजिनियस विलेजेस पर आत्मनिर्भर 4G साइट्स का जो इंस्टॉलेशन हुआ है, उसके अलावा जो 5G कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम था, इसको भी अभी रेक्टिफाई करके नॉर्थ ईस्ट के

0: दराज इलाकों में 5G कनेक्टिविटी का व्यवस्थापन और सुदृढ़ हुआ है। और इसके अलावा जैसे 6355 GPUs जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में था उसमें ये BSNL सर्विस रेडी करके कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया। जैसे डिजिटल विलेज का स्कीम हो गया, सिक्किम में भी डिजिटल विलेज बन रहा है। जैसे और जितना भी ऑफिस को डिजिटलाइज करना और ई विधान सेवा जैसे सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में करना और सिक्किम फर्स्ट पेपरलेस लीगल सर्विस जो कोर्ट में बनने का जो रिकॉर्ड हुआ, ये सब शायद डिजिटल इंडिया के कारण ही संभव हुआ है और इसको हम लोग आगे बढ़कर ले रहे हैं।
1: सर, केंद्र सरकारी योजना है जो उत्तर पूर्व के युवाओं को उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को कैसे बढ़ावा दे रहा है?
0: विशेष करके नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड और ये नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के थ्रू लगभग 25 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाना और उद्यमी को विभिन्न प्रकार से सहयोग करना, और सिक्किम का ही देखा जाए तो हम लोग का अपना सीट सेल के माध्यम से सिक्किम स्किल्ड यूथ स्टार्टअप स्कीम को कार्यान्वयन लाना, और इसी हिसाब से सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जैसे मणिपुर में हो गया, मिजोरम में हो गया, वहां पर अपना अपना नॉर्थ ईस्ट के जितना भी राज्य है वहां पर स्टार्टअप स्कीम इन्होंने लॉन्च किया है। तो वो उसी के थ्रू स्टार्टअप को बढ़ावा देना और प्राइम मेघालय प्रोग्राम और स्टार्टअप मणिपुर जैसे और आसाम स्टार्टअप और ये सब में स्टार्टअप के थ्रू सहयोग हो रहा है। और इसी हिसाब से मार्क पोर्टल के थ्रू जैसे युवाओं को उद्यमी बनने के लिए वहां से विभिन्न प्रकार का फैसिलिटी मिलना और उन्नति स्कीम के थ्रू विशेष करके टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई निवेश करना चाहता है और उद्यमी बनना चाहता है, स्टार्टअप स्कीम शुरू करना चाहता है, तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बहुत से फायदे युवाओं को दिया जा रहा है।
1: सर, हेल्थ केयर सेक्टर एक राज्य को आगे बढ़ने के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, तो व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर फैसिलिटी ये उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए?
0: उत्तर पूर्वी राज्य के लिए विशेष करके अभी जो घोषणा होने के बाद अभी ये काम भी शुरू हुआ है, जैसे एम्स गुवाहाटी का स्थापना होना और जितना भी नॉर्थ ईस्ट के मेजर हॉस्पिटल्स में टेरिटरी केयर सेंटर और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटल को स्थापना करना, इसी हिसाब से मतलब विभिन्न योजना को वहां पर कार्यान्वयन करना और मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के थ्रू 100% फंडिंग जो क्रिटिकल फिजिकल गैप्स और प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर में करना, क्लीन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये सब चीजों को जैसे पीएचसी और पीएचएससी लेवल तक ले जाकर गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट सहयोग कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से ये प्राइमरी लेवल तक ये हेल्थ केयर फैसिलिटी का अपग्रेडेशन बहुत तेजी से हो रहा है।
1: सर, शिक्षा संबंधी पहल क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के बेहतर बनाने को कैसे सहायता कर रहे हैं?
0: विशेष करके शिक्षा क्षेत्र में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के जितना भी राज्य है वहां पर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो ये पॉलिसी के अंतर्गत जैसे पीएम श्री स्कूल्स का को जैसे एग्जिस्टिंग स्कूल्स को पीएम श्री स्कूल बनाना और सेंट्रल के विभिन्न स्कीम्स को वो स्कूल्स को फैसिलिटेट करना और मॉडर्न स्कूल्स को गठन करना, जैसे सिक्किम में विभिन्न मॉडर्न स्कूल्स को गठन करके और पीएम और डोनर और विभिन्न मंत्रालय के फंडिंग के थ्रू इसको और शिक्षा को अच्छी बनाने के कारण ही आज सिक्किम 100% लिटरेट स्टेट अभी भी घोषणा हुआ है। तो ये सब स्कीम्स के कारण जैसे नीति आयोग का प्रोजेक्ट है साथ एजुकेशन, ये सब प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे काम हो रहा है, जैसे आईटी सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के थ्रू नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को गठन करना सभी स्टेट्स पर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इंजीनियरिंग और टेक्निकल करिकुलम में इंक्लूड करना और पीएम विश्वकर्मा योजना, डिजिटल लिटरेसी और ये सब स्कीम्स को लॉन्च करने के बाद एजुकेशन में बृहद डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं।
1: सर, हम सभी को पता है कि पर्यटन का भूमिका उत्तर पूर्व के आर्थिक विकास में बड़ा अहम है। आपको सर ऐसा कौन कौन सा स्कीम्स लगता है जो उत्तर पूर्वी भारत स्पेशली सिक्किम के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है?
0: जैसे मैंने बताया उड़ान स्कीम के अंतर्गत

0: एयरपोर्ट का गठन करना और पर्यटन को एक्सेसिबिलिटी फ्री बनाना, और दूसरा चीज स्वदेश दर्शन 1 और 2 के अंतर्गत विभिन्न स्कीम्स को लाकर और जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स को रिनोवेशन रिपेयरिंग करना और न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करना, ये सब चीज से पर्यटन का डेवलपमेंट वृद्धि बहुत तेजी से हुआ है। और प्रधानमंत्री जी का बार बार संबोधन में नॉर्थ ईस्ट की विजिट करना, जैसे सिक्किम स्टेट का विजिट करना, इसका मायने के कारण से आज देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन का जो विजिट है इसमें काफी वृद्धि या तो उसमें ग्रोथ हम लोग ने मैसिवली देखा गया है।
1: सर, हवाई अड्डे का बात जब आया तो एक चीज जानना चाहेंगे, श्रोताओं का भी ये इंटरेस्ट होगा कि फिलहाल सिक्किम में जो हवाई अड्डा है पाकियोम नॉन ऑपरेशनल है, पर सर आगे जाकर फ्यूचर में उसको थोड़ा रिवाइव करने का या और कोई हवाई अड्डे का मतलब सोचना होने का कोई संभावना है कि नहीं?
0: ये जो हवाई अड्डा है इसको लगभग 3 साल हुआ बंद हुआ, 3 से 4 साल हुआ, तो हम लोग इसको खोलने के प्रयास में है। जैसे हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री प्रेम सिंह थामंगोली जी जब भी दिल्ली जाते हैं और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं, तो ये चीज को हम लोग ने बार बार उठाया है। तो थोड़ा वेदर फिजिबिलिटी नहीं होने के कारण भी थोड़ा एक प्रॉब्लम है और इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं और फ्यूचर में हम आशा करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से और विभिन्न एयरलाइंस कंपनीज के मतलब इंटरेस्ट के कारण और ये फिर फंक्शनल होगा, और ये फंक्शनल होने के बाद मेनली बेनिफिट होगा सिक्किम के लोगों को और टूरिज्म का ग्रोथ में और ये बढ़ावा मिलेगा।
1: सर, उत्तर पूर्वी की पर्यटन क्षेत्र में स्वदेश दर्शन और प्रसाद, ये दो जो स्कीम है इसका थोड़ा भूमिका हमारा श्रोताओं को बताइए प्लीज।
0: विशेष करके प्रसाद स्कीम और स्वदेश दर्शन जो कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और की डेस्टिनेशन एंड पिलग्रिमेज साइट को बढ़ावा देने के लिए ये पीएम मोदी जी का एक बृहत योजना है, और इसमें विशेष करके नॉर्थ ईस्ट सर्किट डेवलपमेंट होने करने के लिए बढ़ावा दिया गया था। इसमें विशेष करके टूरिस्ट लॉज, हेलीपैड्स और व्यू पॉइंट्स ये सबको मतलब काफी रूप से बृहत रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, और स्वदेश दर्शन 2.0 भी शुरू हुआ था, जहां पर जैसे पिलग्रिमेज साइट और विभिन्न जो अनआइडेंटिफाइड टूरिज्म डेस्टिनेशन था उसको बढ़ावा करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको विकास करने के लिए एक तरह से कहा जाए तो ये प्रसाद और स्वदेश दर्शन के बिहाफ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बहुत ज्यादा फंड मिला है और वो फंड को यूटिलाइज भी हुआ है और उसका विजिबल आउटकम भी अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे टूरिज्म ग्रोथ होना और न्यू डेस्टिनेशन को प्रमोट होना और न्यू डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करना और टूरिस्ट लोगों का इंटरेस्ट वो डेस्टिनेशन के तरफ बढ़ना भी एक ये स्वदेश दर्शन का सक्सेस स्टोरी हम लोग मानते हैं।
1: सर, पर्यटन के साथ साथ सिक्किम अपनी जैविक खेती के लिए भी प्रसिद्ध है
0: जी।
1: इस मॉडल से सतत विकास और किसानों को आप आय बढ़ाने के लिए कैसे योगदान दिया जा सकता है?
0: विशेष करके ये जो हम लोग का ऑर्गेनिक स्टेट है, ये हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग ही ऑर्गेनिकली हम लोग प्रैक्टिस करते थे
1: जी।
0: तो इसको बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से केंद्र का सहयोग और सिक्किम राज्य सरकार की जिस तरह से भागीदारी है और सोच के कारण से अभी जैसे जितना भी कैश क्रॉप्स में इंसेंटिव देना, ये सब ऑर्गेनिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार ने, जैसे हमारा सिक्किम सरकार ने किया है, और इसके अलावा जैसे इफको ऑर्गेनिक्स का गठन करके जैसे केंद्र और राज्य के दोनों का साझेदारी में इफको ऑर्गेनिक सेंटर्स को गठन करके जो ऑर्गेनिक्स जो प्रोडक्ट्स है उसका जो मूल्य अच्छी तरह से नहीं मिलता था, तो ये इफको ऑर्गेनिक्स की तरफ से जैसे कृषकों का जो आय अर्जन है उसको बढ़ना और जो उन लोग का प्रोडक्ट का सेल करने का कोई जगह नहीं था, तो इफ्को ऑर्गेनिक्स के थ्रू खरीद रहे हैं, सरकार एक उच्चतम मूल्य में खरीद रहा है। और इसके अलावा इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग विभिन्न स्कीम्स लॉन्च किया है, जैसे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करना, सीड और सैपलिंग्स को प्रोवाइड करना, और एग्रीकल्चर क्षेत्र में कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग मॉनिटरिंग करना और मोटिवेशन करना, यही सब सिक्किम ऑर्गेनिक्स को थोड़ा बढ़ावा देने का सिक्किम सरकार का लक्ष्य है, और इसमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हम लोग को मिल रहा है।

0: सड़क ग्रामीण विकास और कनेक्टिविटी से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं से सिक्किम एज ए राज्य कैसे लाभान्वित हो रहा है सर?
1: विशेष करके पहले हम लोग के पास सिर्फ एक ही हाईवे था, अभी तीन से चार हाईवे नेशनल हाईवे हुआ है और इसमें विशेष करके एनएचडीसीएल का इन्वॉल्वमेंट और एनएचडीसीएल को इन्वॉल्व करके वो हाईवेज को और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उसका अपग्रेडेशन करना, जैसे पीएनजीएसवाई का फंडिंग की तरफ से, जैसे बहुत पहले बहुत कम मिलता था, अभी पीएनजीएसवाई का फंडिंग का बढ़ना और पीएनजीएसवाई का रोड्स को अपग्रेडेशन करना और रोड कनेक्टिविटी को सिक्किम सरकार भी विशेष रूप से ध्यान दे रही है और विशेष करके एक जो NH10 था सिक्किम का, जैसे लाइफलाइन माना जाता है, इसको अभी NHDCL को हैंडओवर करके अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी इसको क्लियरेंस दे दिया है। तो ये हाईवे का अपग्रेडेशन होना भी एक बहुत बड़ा बात है और सिक्किम का इकोनॉमी, सिक्किम का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिक्किम का समग्र विकास में ये रोडवे कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण से बहुत फायदा मिलेगा। और इसके उपरांत जैसे डोनर मिनिस्ट्री और केंद्र के सरकार के सहयोग के कारण से विभिन्न पुराने ब्रिजेस को फिर रेनोवेट करना, न्यू मॉडर्नाइज करना और रोड्स को फिर मतलब न्यू लुक देना, न्यू अपग्रेडेशन करना, ये सब कारण से रोडवे का कनेक्टिविटी बेहतर हो रहा है, ये हम लोग मानते हैं।
0: सर, एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत व्यापार और संपर्क के लिए सिक्किम के पास कौन कौन से अवसर है?
1: एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत व्यापार के क्षेत्र में विशेष करके हम लोग के पास हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को जो 10 ईयर्स टैक्स सब्सिडीज मिला था वो अभी रिन्यू करने का एश्योरेंस मिला है, तो और भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी सिक्किम में आने का आसार है और हम लोग एक एडुकेशन इंडस्ट्री हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे विभिन्न यूनिवर्सिटीज का सिक्किम में आना और यूनिवर्सिटीज बढ़ना। तो ये एडुकेशन के क्षेत्र में भी एक मतलब एडुकेशन इकोनॉमी भी हम लोग बूस्ट करना चाहते हैं और इसके अंतर्गत विभिन्न जितना भी सहयोग मिलना है सब मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें मतलब एक विजनाइज तरीका से आगे बढ़ रहा है।
0: सर, एक दिन ऐसे भी थे कि महिलाओं को सिर्फ बेनिफिशियरी के तौर पर ट्रीट किया जाता था, अब महिलाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में महिलाएं काफी आगे आ रहा है और अपना खुद का बिजनेस, स्टार्टअप, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आत्मनिर्भर बन रहा है और वो किसी के ऊपर निर्भरशील उतना नहीं रहने की पूरी जर्नी में शामिल है। सर, इसी तहत जानना चाहेंगे कि महिला स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप सिक्किम और उत्तर पूर्व के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में कैसे योगदान दे रहे हैं?
1: जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जितना भी है, जितना भी गांव में सेटअप हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के कारण से जो अनएम्प्लॉयड महिलाएं थी और जो घर में बैठे हुए थे, उनको आज एक उड़ान मिला है, उनको एक पंख मिला है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं अपना समाज के लिए, अपने आप के लिए आत्मनिर्भर बन सकता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जैसे उन लोग विभिन्न स्टार्टअप शुरू किया है, विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्टअप स्कीम्स में शुरू करके जैसे एक माइक्रो लेवल का अपना इंडस्ट्रीज अपना गांव में सेटअप करके वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर रहा है और इसके अलावा जैसे लखपति दीदीज का भी जो प्राइम मिनिस्टर ने एनविजन किया है उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बैकबोन माना जाता है जो एक गांव को इकोनॉमी को सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि एक घर की माँ अगर सशक्त होती है तो वो घर सशक्त होता है। तो एक घर की माँ को सशक्त बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए से जिस तरह से वुमेन्स को इम्पावर किया जा रहा है, तो बाकी में एक लाजवाब तरीका से एक गांव को, कोई भी गांव को पूरा एक समूह क्रिएट करके वुमेन्स को एक क्यूमुलेटिव वे से इम्पावर किया जा रहा है।
0: नवीकरणीय ऊर्जा और हरित विकास पहले सिक्किम और उत्तर पूर्व के भविष्य को किस प्रकार आकार दे रहा है?
1: नॉर्थ ईस्ट में अभी देखा जाए तो बीरिस रिवर्स है और डाउन स्ट्रीम्स है, इसमें पावर प्रोजेक्ट्स लगाकर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना और इसके अलावा जैसे नॉर्थ ईस्ट के में विभिन्न इंडस्ट्रीज लगाकर उसको बढ़ावा देना और इसके अलावा जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो इससे भी मतलब नॉर्थ ईस्ट एक रिन्यूएबल एनर्जी का हब बन सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को माना जाए तो नॉर्थ ईस्ट के अगल बगल में विभिन्न देशों हैं, वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का काफी तरह से कर

0: सकते हैं। और जैसे पावर ग्रिड में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के थ्रू नॉर्थ ईस्ट का जितना भी हाइड्रो प्रोजेक्ट, तो पावर ग्रिड में जो हमारा पार्टिसिपेशन है वन ऑफ द हाइस्ट है। तो इसके कारण से देश का विकास में और जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में नॉर्थ ईस्ट अग्रज में मानता हूं।
1: सर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अभी कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां केंद्र और राज्य सरकार के सामने हैं जिनका समाधान अति आवश्यक है?
0: चुनौतियां तो मेन तो है, रोडवे कनेक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाना है, मेनली रेलवे कनेक्टिविटी और फ्लाइट कनेक्टिविटी को भी थोड़ा बढ़ाना है। कनेक्टिविटी का चैलेंजेस है, लेकिन ये नहीं कि चैलेंज है उसके उपरांत अभी जीरो है, उसका वो मायने नहीं है। मतलब इसका डेवलप हो रहा है, तो अगर और तेजी से अगर ये सब चीजों का डेवलप हो जाता है तो नॉर्थ ईस्ट एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
1: श्रोताओं, हम धीरे धीरे इस अंतर्वार्ता का अंतिम पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे विकसित उत्तर पूर्व और विकसित भारत 2047 का, विकसित उत्तर पूर्व और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य को प्राप्त करने में सिक्किम राज्य की भूमिका को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?
0: जो प्राइम मिनिस्टर ने विकसित भारत 2047 का एक मॉडल उन्होंने और संकल्प किया है, तो इसमें हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जितना भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इसको साथ देते हैं, विशेष करके सिक्किम भी साथ देते हैं। और जब देश का आजादी का 100 साल पूरा होगा तो विकसित भारत 2047 अर्थात आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करके और वीमेन और यूथ को पूर्ण मतलब इम्पावर करके आगे बढ़ने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, इसमें हम लोग साथ है। और नॉर्थ ईस्ट देश के मानचित्र और देश का कोई भी अगर मतलब ऐसा स्कीम्स आता है या तो देश का कोई भी उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग साथ है और जरूर साथ में रहेंगे।
1: सर, आज का अंतर्वार्ता का आखिरी प्रश्न आपके लिए, राष्ट्र निर्माण और क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में आप सिक्किम और उत्तर पूर्व के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जितना भी उत्तर पूर्व के युवा है, इतना स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाया है, जैसे राज्यों विभिन्न राज्यों का अपना अपना स्कीम्स है, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का विभिन्न स्कीम्स है, स्कीम्स को आप लोग लाभ ले लीजिए। जैसे मैं देख रहा था उन्नति स्कीम, इतना बढ़िया स्कीम्स है स्टार्टअप के लिए, लेकिन इसका बेनिफिट्स बहुत कम है। नॉर्थ ईस्ट के जितना भी स्टेट है उसमें रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुआ है, तो ये सब स्कीम्स का लाभ आप लोग ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और ये जो बेनिफिट्स मिल रहा है ये बेनिफिट्स का भरपूर लाभ लेके आगे बढ़ने की हम लोग सलाह देते हैं, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के उज्जवल भविष्य की तरफ है, उन लोग का उज्जवल भविष्य निर्माण करना चाहते हैं। ये है कि हम लोग को भी सशक्त होकर ये सब चीजों का लाभ लेना चाहिए।
1: तो श्रोताओं, आज हमारा अंतर्वार्ता में आज प्रमुख स्कीम्स के बारे में हम चर्चा की है जो उत्तर पूर्वी के विकास, सिक्किम हो या बाकी सारे उत्तर पूर्वी राज्य को विकास में अहम भूमिका निभाए है। हम आशा करते हैं इस अंतर्वार्ता से आप काफी प्रभावित हुए होंगे। और अंत में मैं विकास बसनेट जी, जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल सीएम प्रेम सिंह तमंगोले एंड प्रेस एंड पब्लिक अफेयर का प्रमुख है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं फिर एक बार कि अपना बिजी शेड्यूल से समय निकालकर वो आकाशवाणी समाचार गांगटोक में इस अंतर्वार्ता को भाग लेने आए हैं। तो आशा करते हैं कि सिक्किम राज्य और उत्तर पूर्वी बाकी राज्यों का जो विकास का सिलसिला है, जो विकास का कारवा है, वो ऐसे ही चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग गोले जी एंड आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलता रहेगा। फिर मिलेंगे अगली अंतर्वार्ता में, जुड़े रहिए आकाशवाणी समाचार गैंगटक के साथ।
2: श्रोताहरूले अहिले सुन्नुभयो माननीय मुख्यमन्त्रीको राजनैतिक सचिव श्री विकास बस्नेतसँग सिक्किममा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै अष्टलक्ष्मीहरूको विकासबारे विशेष चर्चा। यो आकाशवाणी गान्तोकको। अब श्रोताहरूलाई लिएर जाँदैछौ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रतर्फ।
3: भेज रहे हैं हमें अमरावती महाराष्ट्र से, और एक बड़ी ही दूर से हमें मैसेज आया है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से भी हमें सुना जा रहा है। प्रतिति घोष जो हैं वो हमें लिख रही हैं कि वो भी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं। अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन राजा, गोसिया फातिमा, ये हमें लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। और अगला जो मैसेज है ये है बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खां अजलान, ये हमें मोताला बाजार से जो है मैसेज आया है। और अगला जो मैसेज है ये है मोहम्मद अफरोज का, आपका मैसेज मैंने पहले भी शामिल किया था और फिर से शामिल कर दिया, कोई बात नहीं है ना। अगला मैसेज है रेणुका बेटा राम राम, राम राम अंकल जी आपको भी, और ये हमें गौरी शंकर नांगलोई से लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। जब ऐसे प्यार भरे मैसेज आते हैं ना तो दिल सच में भर उठता है और मन करता है कि बस गाने ना सुनाओ, मैं आपको आपके बस आपके मैसेज पढ़ती रहूं, पर ऐसा नहीं हो सकता। आप भी सोचेंगे अरे मेरा गाना तो नहीं बचा है, बस ये मैसेजेस पढ़े जा रही हैं, पर क्या करूं, प्यार इतना ज्यादा है आप लोगों का कि बस मन नहीं भरा मेरा। अगला जो मैसेज है ये हमें आया है महाराष्ट्र से, किशोर वडतकर, शुभम वडतकर और पुन्नू वडतकर, ये हमें भेज रहे हैं अपना प्यार मैसेजेस के थ्रू। और अगला जो मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूं वो है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहाना अरजान और अब्बान अब्बासी, ये हमें बुलंदशहर से जो है मैसेज आया है। और अगला जो मैसेज है ये हमें भेजा है, ये आया है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, ये हमें जो है लिख रहे हैं, जमशेदपुर से हमें मैसेज आया है। अगला मैसेज हमें भेजा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू सुभाष योगी, ये हमें जो है मैसेज कर रहे हैं। और सूरत गुजरात से भी जो है नीलेश टेलर और प्रिया और उषा ने हमें मैसेज किया है। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से भी हमें मैसेज आया है। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह का। और अगला जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूं इसकी हमें फरमाइश भेजी थी चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने, फिल्म है हीरा पन्ना। और चलिए सुनते हैं, आप हमें मैसेजेस करना बिल्कुल मत भूलिए, नंबर मैं एक बार फिर दोहरा देती हूं 9868868753। आपका प्यार भेजते रहिए तभी तो पता चलेगा कि आप FM गोल्ड और हमारे कार्यक्रम से कितना प्यार करते हैं।

छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखना रानी, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूल वाले, कापसहेड़ा बॉर्डरलाइन दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, रबिया मंता शाह, आशु अहमद फूल वाले ये हमें मैसेज कर रहे हैं। विष्णु गार्डन नई दिल्ली से नईम खां, अकरम, निसार, सरून ने हमें अपना मैसेज भेजा है। और अगला मैसेज जो है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खां ये भी हमें सुन रहे हैं। और भवानीगढ़ जिला संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा, सुरेंद्र कौर, हरप्रीत कौर, इन्होंने भी हमें जो है मैसेज भेजा है। आदिल कमर गुन्नौर से ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज है वो है गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार। और अगला मैसेज हमें आया है तवार वाली गली खांडवा एमपी से नशरी खां, वासिम खां और मुबीना खान ये भी हमें सुन रहे हैं। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति, पौरुष वाइटफील्ड बेंगलुरु से ये हमें सुन रहे हैं। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढीगिया, नमन ढीगिया, इनका भी हमें मैसेज आया है। और अगला जो मैसेज है अनीता वर्मा पीतमपुरा दिल्ली से हमें लिख रही हैं, ये भी हमें अपना प्यार भेज रहे हैं मैसेज के थ्रू। छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन ये भी हमें अपना प्यार भरा मैसेज भेज रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा इनका। और अगला जो मैसेज है वो है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा ये भी हमें अपना प्यार भरा मैसेज भेज रहे हैं। कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और ये हमें दादरी गेट भिवानी से इन्होंने जो है हमें मैसेज किया है। आपका जो ये प्यार आप भेज रहे हैं मैसेजेस के थ्रू इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और जिन लोगों के मैसेज में नहीं शामिल कर पा रही हूं मुझे माफ कर दीजिए, पर जैसा मैंने आपको कहा कि समय की पाबंदी है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जो है ये भूल चूक हुई है हमसे, वरना जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा तो मन है कि बस मैं यहां बैठूं और आपके मैसेजेस बस पढ़ती रहूं। अगला मैसेज मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से हमें जो है भेजा है। और अगला मैसेज है कस्बा गुन्नौर वालों की तरफ से पसंदीदा गीत सुनवा दीजिए, जरूर जरूर मेरी कोशिश यही है। अगला गीत जो मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूं वो है बड़ी बहन फिल्म

से जिसकी फरमाइश हमें की थी गंज दुंदवारा से शमसुल शाहिन अनु खान अदनान खान और फैजान ने। तो चलिए सुनते हैं ये गीत सुरैया जी की आवाज में।

अगला मैसेज हमें आया है प्रकाश चंद्र जोशी केराला घाटी चंपावत उत्तराखंड से राज और ये भी हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। अगला मैसेज नईम खान निसार सरुन अक्रम ये हमें उत्तर प्रदेश से मैसेज कर रहे हैं और रविन्द्र फ्रॉम सिरसा हरियाणा नैरा पनिहार पूजा पनिहार यश पनिहार ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं और ये लिखा है इन्होंने कि इस वक्त हम सुन रहे हैं किचन में मन भावन रेणुका दीदी के साथ सबरा शबाना और रईसा जो है ये हमें मैसेज कर रही हैं। आप किचन से सुनिए या हॉल से या फिर बेडरूम से हमें तो बस इस बात की खुशी है कि आपके घर का एक सदस्य बनकर हमें रहना बहुत अच्छा लगता है और आप जो ऐसे मैसेज कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो मैसेज है ये हमें आया है महेंद्र मोदी ठाकुर साहब रामगढ़ कैंट से ये हमें भेज रहे हैं अपना मैसेज और अगला जो मैसेज आया है वो है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि अश्विनी मंगलाबेन शाह राजेंद्र जी शाह ये हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है दिल्ली से और ज्योति मक्कर हमें मैसेज कर रही हैं। अगला मैसेज हमें मध्य प्रदेश से आया है हुकुम करम कर सुनीता करम कर हार्दिक करम कर प्राची तनु ये हमें भेज रहे हैं और अगला जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो है लता जी की आवाज में और फिल्म है तलाश जिसकी फरमाइश हमें की थी सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी का गांतुक केंद्र है। मैं हूं आपकी मेजबान कविता शर्मा और अभी आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सौर्य गाथा। दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम आपको मनोरंजन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आज 17 जून है और इस दिन को पूरे विश्व में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट यानी मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस, यह दिन पालन करने का मुख्य उद्देश्य बंजर होती भूमि को फिर से प्रयोग में लाना ताकि सूखे से बचा जा सके। आपको बता दें, यूएन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिवस की शुरुआत की थी और इसका आयोजन मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन के सचिवालय से किया जाता है। बातें आगे होती रहेंगी, अभी इसी के साथ सुनते हैं फिल्म मोरा का यह गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, जिसे संगीत दिया है विजय साह ने।

अभी आपने सुना फिल्म मोरा का गीत। दोस्तों, अगर हम आज अपनी जमीन को नहीं बचाएंगे तो कल हम संकट में पड़ जाएंगे। आपको बता दें, हर साल एक नए थीम के साथ इस दिन का पालन किया जाता है और इस साल का थीम चारागाहों के संरक्षण पर केंद्रित है। चारागाह पहचाने, सम्मान करे, पुनर्स्थापित करे, रेंज लैंड रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट। यह थीम दुनिया के विशाल चारागाहों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य इन चारागाहों की आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व को मान्यता देना है। यह भूमि और जल प्रबंधन के में निवेश को बढ़ावा देता है। इसका लक्ष्य खराब हो चुकी भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना है। दोस्तों, अब इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म गैंगस्टर से, जिसे आवाज से सजाया है जेम्स ने और संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने। चलिए सुनते हैं यह गीत।

अभी आपने सुना फिल्म गैंगस्टर का गीत। दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सौर्यगाथा और आज हम मरुस्थलीकरण और सूखे से कैसे निपट सकते हैं इस विषय पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आज हमारे आसपास की उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर हो रही है और पानी की कमी एक विकराल रूप ले रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और पानी की बर्बादी इसका सबसे बड़ा कारण है और उन खाली जमीनों को हम प्लास्टिक के कचरे से भर देते हैं। अब एक सचेत नागरिक की हैसियत से हम सबको मिलकर उन जमीनों को फिर से हरा भरा करना है। कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि लोग कोऑपरेट नहीं करते। उन्हें लगता है यही विकास है, लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारी आने वाली पीढ़ी अब कैसे बचेगी। तो आज से ही हमें अपनी निजी जमीन को, निजी खाली पड़ी हुई जमीन को हरा भरा करने का प्रण लेना है और सबको अपनी निजी जमीन में पेड़ पौधे लगाने हैं। अब इसी के साथ सुनते हैं फिल्म मिशन कश्मीर का यह गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, जिस संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म मिशन कश्मीर का गीत। दोस्तों आपको बता दें, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए सबसे पहले तो पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाना होगा। उसके लिए हमें कोई भी वस्तु जरूरत से ज्यादा नहीं लेनी है। एक से काम हो रहा है तो उससे ज्यादा लेना ही पॉल्यूशन क्रिएट करना है, क्योंकि जब वो सामान खराब होगा तब वही सामान खाली जमीन में फेंका हुआ मिलेगा। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना है। जितना हो सके तापमान नियंत्रण में लाने वाले पेड़ पौधे लगाने होंगे, जैसे कि बांस, पीपल, नीम, अमलतास इत्यादि, ताकि सूखे और मरुस्थलीकरण से बच सके और नियमित रूप में वर्षा होती रहे। दोस्तों अब इसी कड़ी में सुनते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन का यह गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, जिसे संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।
1: 6 5 4 3 2 1 लेट्स स्टार्ट द फन।

दोस्तों अभी आपने सुना हम आपके है कौन का गीत। दोस्तों आपको बता दें, मरुस्थलीकरण और सूखे को नियंत्रण में लाना हर मनुष्य का कर्तव्य है। हमें खुद जागरूक होकर दूसरों को भी जागरूक करना है ताकि हम इससे निपट सके। अगर हम इससे निपट नहीं पाएंगे तो हमारा जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हमें सचेत नागरिक की भूमिका निभानी है। आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, अंतिम प्रस्तुति फिल्म ताल से उदित नारायण और अर्का याग्निक की आवाज में। इस गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने।

0: Talage tamchige nyalham lo Shingle pochu lo kyushep tang Chisung nonshe ki charshi di kolo Yani PM Pradhan Mantri Krishna Samman Kisan Samman Nidhi Yojana di kolo shushin Ledim charshi dini gyagar ki silen chumpo Narendra Modi choki gyakab na lo shuye pegi Shingyo pochu lo chisung tang Kyushep pyawe ki ten lo lalin pe na bawin Silin Choki Charshi Dini Inji Lo Nidong Chugi Dao Nipigi Tse Ji Lo Gorakpur Gikyo Ina Le Gochuk Nambabe Charshi Digi Miyu Zodira Gyakab Na Lo Shingle No Di Yekin Khonzu Lo Beljor Changyu Gi Tole Roran Pishi Gi Charshi Jini Shingle Po Gepo Chigi Sashi Sago Yeru Yang Tingsan Benjo Tan Changyu Mebe Genge Piyati Shingle Gyachita Piyati Nang Matsu Pige Neta Tunshinde Po Dilo Sikdi Ki Gyaga Uyishun Ki Tuchi Chumpi Tole Rangi Shingyok Po Yani Shingle Po Koran Rangi Ray Sashi Yekhenzu Lo Shingle Nangshiki Tenlo Shungi Tole Lochi na lo teng sung piyati, instrument teng sung piyati, chanyi diru nito piyati ki lochi na kendom chanyi diru donta tu tambo toshine bodu. Chanyi di ni chungchung yero yang tingsan pento gyachita dupshe maungro yang shungi tole shingle bozo lo zikuru tang kushab na wike tablamshi insi shushindo. Gyakab katemi inrung yargi jen inrung dingsang gyakab udi nalo shugin kin shingle pochu ki shingyok maynaba jena gyakab gi netan kyota tenshiye pobe. Konlenge zule dintige gyakab la beljir yargi tongshi la pentyo gyachita dushinye po piyadige charshi diye korlo zu beshinye pobe charshi ditan doywegi doywegi charshi kyepochi shungi tole tom. Lale nashi yepachini, digi kepsan lenshi yepi, tudi yepachini, ngadi raran susu yiki, shingle lela zulo, dewa nangu slupti, shushinyi. Lasu.
1: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath, main Vishal Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ड्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज डब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रूपये पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्जमा पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता अब प्रस्तुत छ दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम।

0: किसी के साथ बिना कॉन्डोम यौन संबंध HIV को न्योता दे सकता है, इसीलिए इसे इग्नोर नहीं, फिर से याद करो।
1: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें।
2: श्रोतायु सुन्नुहोस् लाइभ फोन इन कार्यक्रम सम्बन्धी एक सूचना। आगामी तारीख 19 जून 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 प्रसार गरिने ग्रामीण कार्यक्रममा हामी लिएर आउनेछौ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा लाइभ फोन इन कार्यक्रम। विषय रहनेछ योग गरौं निरोग बनौं। यस योग विषयमाथि अधिक जानकारी दिन भने हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित रहनुहुनेछ योग प्रशिक्षक श्री राम प्रसाद पौडेल। र यस विषयमाथि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा भए हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 03592201171 अथवा 03592201171 कल गर्न सक्नुहुनेछ।

0: सक्नुहुन्छ बिएलओलाई, अल बिएलओलाई कल गरेर तपाईँ झट्टै त्यो तपाईँको फर्म बुझाइदिनुहोस्।
1: एक्ला लिम्बू अनुप छेत्री उन मंजिल शर्मा न लवो अरे सपुत बुद्ध सकती फुंगो थपलम सुरंग सोंगतेत ग्याकर सपुम हिमली दिल्ली आलसा संविधान सदन का दिखोबू विकसित भारत नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2026 का रेंजोंग सचोप का अकाले वुंथोमो नारी शक्ति वंदन कैटलाइजिंग इंक्लूसिविटी उन विकसित भारत 2047 ली वाम्बू पेतन सा थोपेनन ग्याकर पवर सा नेथे पक लैंगजुम उनके के ब्रंचो लैंगशर पंसा ग्यो कत्सा के के अकाले बुसोंडेम लैंगकत का बुलात खट बुंग थोमो थोपे का अकाले बुसोंडेम पुम्प्रिम लिप्लों का रिंगवेट डिक्लोन सा रिंगवेट पंग उन मिनोलोट बेक सा दुक्तों पंसा अवेथो कच्छबु प्लेटफॉर्म बी बुंग थोमो नेपाली साहित्य परिषद सिक्किम रेन्जोङ नाम अरेसा प्रेस्टिजियस बानु छिलो गानबु पिन्दोकपन सुक्रा सुबा रेम्फुनों शिबु निमो मिछकारिसा योक्लोनबु कुर्मोम पोंसा नंगसिंग का रिंग्त्या परे लेवुं थुमो लुम सा अरिंग रिंगमोम उन लुंगतेन का अदोत अचोप सो थुबु रेन सुबानन कुर्छकारि सदो पुटबु लेन्थो फ्रिदोकपन कच कट गो थुबु गो गोंगने ग्याकर सलुम मिनर बोंगजुम बनारप सपटबु कम कमज दोकला गोथोमो रेनन सिक्किम एकेडेमी सशिदोकपन सल्युकला छोरपु नेत योगेन स ल्युका युगमत वंगथोमो कथा बनेको व्यथाहरु उन मेरो मेरो जल बटलिन बोरेन छता थुपु पिन्युत पोंगला गोथोमो चोंग रिंगबम कला रेनसा पिन्युत नेत्रेम चोरप्योट माथोबु निवंग थोमो बोंगजुमनन रेंसा रिंगमोम लत गुलुनपुन आयित उन पुमथों लत अदोत अचोप रेम तिमलत ल्युका ट्योंगतोत माच्छिबु छिलो बीस शिबु रिंगपेत हुन्थोबु निवंगमो स्रोंस सुलोन अभिदो छंगवंगमो।
2: दे लुंगठी खा गातुइन थारिंगकि निसुल सोनाम चुकी चले सेम्बना Ngadi Ichisu Limpu Micro Small and Medium Enterprises and Labor and Employment Shoba Karan Pelaje Chogi Tharing Ninni Ki Dejong Zikor Dilo Jugdu Pyabo Be Gato Gi Manan Kandra Ki Hu Lo Chapshin Yopi PM Ekta Mol Lo Charjib Yang Na Charjib Yang Review Pyabo Nabo Be Di Yang Chilo Nito Nishu Saksum Le Chashi Loi Chisu Gi Ngu Nang Ngu Tam Saya Yatong tu de jik chapda pia yobi yo jigin yo di zongka jik tenze jik tang geographical indication GI tenze lakta tang lakzoi jala di le rikjung ki jala zu da minda minda e yab nang lo yarsing tang wi ten lo in nga di lempu chu ki yalyong ki koryuk campaign ek per ma ke nam smriti ban bulbule na jabo tang shingo zu yang zu ko na bo be ngadi lempu chu gi batma shri sure thopo nang khen let tura tularam upreti ki chim me nyam chi pepo na di tunga phibo na bo be dejo ki chief electoral goje ceo yadav raj yadav ki taring gato na tension ye bi sir ni tu ni shu zadu ki charge phyaw thang thi zui na enumeration forms to eligible electorals tu ki ke go se she du ceo chu gi electoral forms tu ngadi na person ya thambo go di myo du se yang she du yadav chu gi jun ki che ni shu zage the enumeration form ke she gi juk ki che in se sungbo thang electoral suka ki thujui na e form ke machupo odi chulo draft electoral roll na michuko in se ninda kebo thang odi jable ke na e form ti milembo in se yang sungdu
0: हामी तपाईलाई इन्फर्म गर्न चाहन्छु कि सबै बेलोले भन्नुभएको छ कि हामीले 100% फर्म डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभयो। यदि तपाईले अहिलेसम्म फर्म पाएको छैन र तपाईले अगर केही इश्यु फेस गर्नुहुँदैछ तपाई आफ्नो बेलोसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। यदि बेलोले काम गरेको छैन र तपाईलाई फर्म दिएको छैन पुराएको छैन त तपाई इआरओसँग र एआरओसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि मेरो बेलोको नाम के हो र नम्बर पाएपछि तपाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ बेलोलाई र बेलोलाई कल गरेर तपाई झट्टै त्यो तपाईको फर्म बुझाइदिनुहोस्।
2: एक्ला लिम्बु अनुप छेत्री थाङ मन्जिल शर्मा कि जुन कि छे चौगाले थारी

0: थुप यागर की चोचो दिल्ली सापो की सम विधान साधन ना विकसित भारत नेशनल यूथ पार्लियामेंट नितो निशु साधु ना डेजोंग लो कुछाप यांगना रिप्रेजेंट फ्यावो भी थीम नारी शक्ति वंदन कैटलाइजिंग इंक्लूसिविटी एंड विकसित भारत नितो जिपचो शेदिन लेरिम दीना नदी निशु साजे थंग यालखाप की यूनियन टेरिटोरीज ये नंगले पार्टिसिपेंट्स या तो ये जू साचा चीना ओंबो बे लेरिम दीना पार्लियामेंट्री की डेंदुर की टेंडेन चेंजू चेंबो थंग पॉलिसी की चोदुर सुयंग शेपो बे नेपाली साहित्य परिषद डेजों की लो दी मिंगडा चेन भानु की सुरे दी चमटिक बो गेंबो सुक्राच सुबा लो फ्यूशे इन क्योंता दी एग्जीक्यूटिव कमिटी की शेजम नंगतर दमखा प्यावो बे फलके चमरिक थंग रिग्ने की थन लो सुबा छू की रिग्रम रोग्राम थंग खने यारसेंग बम्बो तंबो बे को लेंजे गनमे लेंचो यांगना काउंसिल की छोकपो छोकचो चंबो जंबो यांगना वाइस चेयरमैन इम्बो थंग गनमे जगार भयुल यालयोंग लेंचो की न्यूजिन पो यांग बे को लेंजे की डेजोंग शेयन सीजन टू टॉम्स की थन लोयांग छाले नांगबो बे टू टॉम्स दी कथा बने को व्यर्था हरु थंग मेरो झाल बटा लाभखेन दी को लेंजे की मिंगताम चेंग की छाले इन दी ले को लेंजे की यो नी लिंबु चमरिक ना पार्टुन प्यावत बे सुरे भानु दी जुलाई की छे चुकसुम निंजा चुनी भानु झंती की थुतन ना सुबह छोलो फ्यूशे इन सोनम योकले थंग रिचु लेला की एटीएम एकेवी के थंग सीएईपी एचटीसी एयू न्यामचिक न्यामदल यांगना कोऑर्डिनेशन फ्यातिखेत बचाओ अभियान की लेडिम नुक पेंडम दुगा ब्लॉक लसे ही बाक्योंग जोंखा ना फ्यावो बे धरिंग की निचुल दिखार जु पोइन थुचीजी
1: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज तथा न्यूज अन एयर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, अब कार्यक्रम सामयिक समीक्षा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवसको अवसरमा एक वार्ता डाक्टर पारसमणि दंगवालद्वारा एक वार्ता।
2: यो आकाशवाणी गान्तोक हो। समसामयिक विषयको कार्यक्रम सामयिक चर्चामा प्रस्तुत छ वार्ता सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। वार्ताकार हुनुहुन्छ डाक्टर पारसमणि दंगाल।

0: शारीरिक तन्दुरूस्ती, मानसिक शान्ति र आध्यात्मिक चेतनाको अनुपम संगम मानिने योग आज कुनै एउटा भूगोल वा संस्कृतिमा मात्र सीमित छैन। प्रत्येक वर्षको जून 21 तारीकका दिन संसारभरि मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसले प्राचीन पूर्वीय दर्शनको यो अमूल्य उपहारलाई वैश्विक मञ्चमा स्थापित गरेको छ। यस वर्ष सन् 2026 विश्वले 12 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउँदै गर्दा यसको केन्द्रबिन्दु र तयारी झनै विशेष बनेको छ। योगको इतिहास हजारौं वर्ष पुरानो भए तापनि यसलाई संस्थागत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको दर्जा दिलाउने काम सन् 2014 भयो। सन् 2014 27 सितम्बरका दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त राष्ट्र संघको 69 महासभामा जून 21 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउन प्रस्ताव अघि सार्नु भएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र संघका 193 सदस्य राष्ट्रमध्ये 177 देशले अभूतपूर्व रूपमा समर्थन गरे। प्रस्ताव प्रस्तुत भएको 90 दिनभित्रै 11 दिसम्बर 2014 संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्यो। 21 जून 2015 नयाँ दिल्लीको राजपथमा पहिलो पटक विशाल रूपमा योग दिवस मनाइयो, जहाँ 35,000 भन्दा बढ़ी मानिसले सँगै योग गरेर गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड समेत कायम गरेका थिए। जून 21 तारीक उत्तरी गोलार्धको सबैभन्दा लामो दिन हो, जसलाई ग्रीष्म संक्रान्ति भनिन्छ। योग र आध्यात्मको दृष्टिकोणबाट यो समयलाई सकारात्मक ऊर्जाको संक्रमण काल मानिन्छ। वर्ष 2026 लागि भारत सरकारको आयुष मन्त्रालयले योग फर हेल्दी एजिङ अर्थात स्वास्थ्य आयुका लागि योगलाई मुख्य नारा तय गरेको छ।
1: इसे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY 2024 के समारोह के तहत महत्वपूर्ण पहलों में से एक के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग, योग फॉर हेल्थी एजिंग। इसके तहत हम सब पूरे देश में, पूरे विश्व में योग दिवस के कार्यक्रम के आयोजन कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री प्रताप राव यादव जी के मार्गदर्शन में एक दिशा में अनेक पहल की गई है, जिनमें से एक योग 365 है। योग 365 का मतलब वर्ष में 365 दिन योग। इसके अंतर्गत ये प्रयत्न गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हाबिल्ड, इनके द्वारा एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया था और हाबिल्ड के द्वारा 100 दिन के लिए YouTube पर, आयुष मंत्रालय के YouTube चैनल पर एक मुफ्त योग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उसमें लाखों लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और आज हम ये सब जो इतने दिनों में जितने लोग जुड़े उसके साथ साथ एक बहुत बृहत प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयत्न नहीं है, लेकिन ये हम सबका, यहाँ जुड़े सभी लोगों का एक कमिटमेंट है। तो स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ विश्व के ऊपर हम सबका ध्यान है और हम इसके प्रति कमिटमेंट है, उसका एक हम सब संकल्प के लिए, संकल्प लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं।
0: बढ्दो शहरीकरण र बदलिदो जीवनशैलीका कारण विश्वभरि नै ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या र उनीहरूमा देखिने स्वास्थ्य समस्याहरू थपिँदै गएका छन्। यो थीमले उमेर बढ्दै जाँदा पनि कसरी शारीरिक गतिशीलता, मानसिक सतर्कता र भावनात्मक सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड़ दिन्छ। यो केवल युवा वा निरोगीका लागि मात्र होइन, बरू जीवनको उत्तरार्धलाई सम्मानित र सक्रिय बनाउने बलियो माध्यम हो भन्ने सन्देश यस प्रस्तावले प्रवाह गर्दछ। यस वर्ष भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसलाई निकै व्यापक र प्रविधि मैत्री ढंगले अगाडि बढ़ाइएको छ। सन् 2026 मुख्य राष्ट्रिय कार्यक्रम पश्चिम बंगालको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक शहर कोलकातामा आयोजना गरिन्दैछ। यस मुख्य समारोहमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफै उपस्थित भई हजारौं योग साधकहरूसँगै कमन योग प्रोटोकल अभ्यास गर्नेछन्। तयारीलाई व्यापक बनाउन आयुष मन्त्रालयले 25 दिने काउन्टडाउन सँगै विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरू सार्वजनिक गरेको छ। सर्वसाधारणलाई अनलाइन दर्ता गर्न र राष्ट्रिय स्तरका गतिविधिमा जोड़िन सहज बनाउन योग संगम पोर्टल पुनः संचालनमा ल्याइएको छ। देशका विभिन्न राज्य र संस्थाहरूमा समर्पित योग स्थानहरू निर्माण गर्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न योग पार्क पोर्टलको शुरूआत गरिएको छ। दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित योग 365 अभियान अन्तर्गत युट्यूब लाइभ स्ट्रीमिङ मार्फत 4,35,000 भन्दा बढ़ी मानिसले एकैसाथ योग सत्र हेरेर नयाँ विश्व कीर्तिमान गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड समेत बनाइसकेका छनृ। गाउँ गाउँ विद्यालय सरकारी कार्यालय र सैनिक ब्यारेकहरूसम्म योगलाई पुर्याउन भारतभर विगत 100 दिनदेखि निशुल्क योग शिविरहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यस अभियान मार्फत 2 लाख भन्दा बढ़ी मानिसलाई योग मित्रको रूपमा प्रमाणित गरी समुदायमा योग सिकाउन परिचालन गरिएको छ।
2: साथियों, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस जल्दै आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है, उसे अपनाना चाहा है। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया, वे भी या तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं। सही में योग कम्युनिटी, इम्युनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है।
0: योग कुनै धर्म वा संप्रदाय विशेषको नभई मानव कल्याणको एउटा विज्ञान हो। व्यस्त दिनचर्या, मानसिक तनाव र आधुनिक रोगहरूबाट मुक्ति पाउन योग आजको युगको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। भारतको कोलकाताबाट शुरू हुने यस वर्षको मूल सन्देशले विश्वभरका ज्येष्ठ नागरिक र समग्र मानव समुदायलाई स्वस्थ, दीर्घायु र ऊर्जावान बन्न अवश्य पनि प्रेरित गर्नेछ।

0: श्रोता यतिन्जेल सुनिरहनु भएको थियो कार्यक्रम सामयिक समीक्षा अन्तर्गत डाक्टर पारसमणि दंगालद्वारा एक वार्ता विषय थियो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता यो सुन्नुहोस् लाइभ फोन इन कार्यक्रम सम्बन्धी एक सूचना। आगामी तारीक 19 जून 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 प्रसार गरिने ग्रामीण कार्यक्रममा हामी लिएर आउनेछौ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा लाइभ फोन इन कार्यक्रम। विषय रहनेछ योग गरौं निरोग बनौं। यस योग विषयमाथि अधिक जानकारी दिन भनी हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित रहनुहुनेछ योग प्रशिक्षक श्री राम प्रसाद पौडेल। र यस विषयमाथि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा भए हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 03592201171 अथवा 03592201171 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। दिन अनि समय आगामी 24 जून 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 अनि फोन नम्बर पुनः एकपल्ट सुन्नुहोला 03592201171 अथवा 03592201171। सूचना पूरा भयो।
1: I'm looking for a life insurance policy that has a low premium, gives a good bonus, and is truly trustworthy.
2: Go for PLI.
3: Along with government employees, all professionals, graduates, and diploma holders can avail the benefits of the PLI policy. PLI is backed by the trust of Postal Department. Contact your nearest post office today or log into indiapost.gov.in.
4: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै श्रोताले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघा साथै न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। त श्रोता, समय बेलुकीको 7:05 भइसकेको छ भने हामी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं यहाँकै फोनमा आधारित रमाइलो कार्यक्रम हेलो श्रोता। त आउनुहोस् कुरा गरौं आजको पहिलो कलरसित। हेलो नमस्कार आकाशवाणी गान्तोक।
5: नमस्कार आकाशवाणी गान्तोक, पूनम जी को मेरा सशत नमन। नमस्कार
4: सशत नमन। नाम क्या है आपका, कहाँ से?
5: जी जी जी, तो मैं आपका जाना पहचाना श्रोता बात कर रहा हूँ।
4: मैं तो पहचान गई, मगर हमारे जितने भी सुन रहे हैं श्रोता, उन लोग को पता नहीं।
5: जी जी जी, उन लोगों को मैं बता देता हूँ। तो मैं ठंडी ठंडी हवा, ठंडे ठंडे लगते से मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी। अभी तक आपके पास अभी गर्मी की जो श्रोता हो गई,
4: सारे लोग तो 45 डिग्री में बैठे हैं ना।
5: जी जी जी, तभी तो मैं उनके लिए मैं ठंडी हवा भेज रहा हूँ, ताकि उनको
4: पहले ठंडी हवा लेकर आ गए।
5: जी जी जी, पहले ठंडी हवा लेकर आ गए ताकि उनको भी थोड़ा गर्मी से राहत मिले। तो बताइए पूनम जी, आप कैसे हो?
4: मैं ठीक हूँ, सब अच्छा चल रहा है।
5: जी जी जी, हमारा भी ठीक चल रहा है। और अभी लगातार थोड़ी दो तीन दिन पहले बारिश हुई थी, लेकिन अभी जो है बहुत अच्छा मौसम है। और आज मौसम है तो बरसात भी होने वाली है, और पूरे देश में, और हमारे हिमाचल में तो खैर बरसात हो जाएगी।
4: बरसात, हाँ, हम लोग का भी यहाँ पर ऐसा ही होता है।
5: जी, तो आप तक जो है हमारे यहाँ ताजे ताजे मीठे मीठे सेब भी पहुँचाएंगे।
4: बाप रे, मुंह में पानी आ गया, बाप रे, समझ बोली। वो भी ताजे ताजे।
5: जी, ताजे ताजे
4: तोड़कर खाना, बाप रे।
5: बिल्कुल बिल्कुल, तोड़कर फिर खाना। और बहुत अच्छा लगता है।
4: मौसम अच्छा लगता है, वो गर्मी का या?
5: देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को मीडियम मौसम अच्छा लगता है। जैसे कि जो मार्च वाला मौसम होता है वो अच्छा लगता है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा ठंडा गर्मी। अगर ज्यादा सर्दी तो फिर ठंड का सामना करना पड़ता है, ज्यादा गर्मी हो तो फिर बुरा हाल होता है। लेकिन हाँ, अगर मिक्स ठीक होता है, थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी।
4: जी, इसी को ध्यान में रखते हुए गाना कौन सा, रुके मैं नाम मैं खुद बोल देती हूँ, राकेश जी। ठंडी ठंडी जगह से बोल दिया ना आपने, शिमला वाले राकेश जी। तो बताइए शिमले वाले राकेश जी, आज सुनना क्या चाहेंगे कार्यक्रम में?
5: आज मुझे एक गाना सुना है, फिल्म का नाम है दुश्मन, और गाने की बोले प्यार को हो जाने दो। तो कुछ दोस्तों को याद करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये गाना डेडिकेट रहेगा।
4: धन्यवाद जी।
5: तो पूरन वर्मा जयपुर राजस्थान से, अविनाश तेली, भगवान सिंह परमार, और शिवा लोहट, मांगीलाल चंदेल, और तमाम सुनने वाले श्रोता, शारदा प्रसाद प्रजापति, और सभी श्रोता के लिए जिनका भी नाम छूट गया, अगर वो भी सुन रहे हैं तो उनके लिए भी गाना डेडिकेट रहेगा।
4: जी जी, धन्यवाद। इतना प्यारा सा गीत सुनाते हैं राकेश जी के फरमाइश में।
5: जी जी जी, बिल्कुल सुना दीजिएगा।

0: हेलो आकाश विनिगांतो।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेले से लक्ष्मण रघोज चाय वाली। चाय पी लो दीदी।
0: चाय पीने का टाइम हो गया मेरा। लक्ष्मण जी हमेशा आकर कार्यक्रम में मुझे चाय देकर जाते हैं।
1: हाँ दीदी।
0: लक्ष्मण जी कैसा चल रहा है बिजनेस?
1: अच्छा चल रहा है दीदी।
0: अच्छा चल रहा है ना?
1: बिक जाता है, खर्च चल जाता भगवान।
0: मतलब ठीक ठाक चलता है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा लगता है लक्ष्मण जी, लोग इतने बिजी होते हैं फिर भी हमारे कार्यक्रम का समय आप लोग को बता रहते हैं, समय निकाल कर कार्यक्रम में कॉल करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ बहुत मन से लगाओ तो लग जाता, मेहनत करना पड़ती है।
0: बिजनेस भी होता है, बिजनेस भी करते रहते हैं, इधर फोन भी लगाते रहते हैं ना।
1: हाँ हाँ आज सुनवा दी दो रास्ते पिक्चर का, रेशमी जुल्फे सरबतिया।
0: ये रेशमी जुल्फे?
1: हाँ जी।
0: चाय बेचते बेचते किसका जुल्फे देख रहा है?
1: नहीं इसका कुछ कोई नहीं देख रहा है, मगर चाय ही बेचते हैं।
0: जुल्फे नहीं देखते?
1: नहीं नहीं देखते।
0: सिर्फ चाय ही देखते हैं ना?
1: चाय बेचता।
0: अच्छा अच्छा जी, किस किस को सुनाना चाहेंगे?
1: ये हमारा गाना रहेगा जो अपने गजराज लोधी है, मांगीलाल चंद्र, बसंती लाल, सुरभद्रीम, विपिन कटारे, ऋषिकेश तिवारी, अमित तिवारी है, और ऋषिकेश तिवारी है, मुकेश भाई साहब है, पाल भाई साहब है, सब है, जो सज्जन भाई साहब, अमदी भाई।

0: हेलो आकाशवाणी गांधो।
1: दोस्तों इस समय आपने ट्यून कर रखा है देश का नंबर वन चैनल आकाशवाणी गांधो चैनल और प्रोग्राम जारी है हेलो श्रोता और मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमल बुगला से और आपके साथ कार्यक्रम में आज आरजे है आरजे पूनम जी।
0: अरे बाप रे ऐसी खुशी में नाम भी बता दीजिए।
1: और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमल बुगला से पूर्ण वर्मा।
0: इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मतलब इतना अच्छा कार्यक्रम में बात किया नाम ही बताना भूल गए ना इसीलिए।
1: जी मैडम नाम तो मैं बता ही रहा था पर मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा ब्रेक देके मैडम आप थोड़ा पहचान ले पर नाम पूछ लिया तो श्रोताओं को बताना जरूरी क्योंकि आप तो जान गई मैडम।
0: जी मैं तो जान गई यही बात है मैं तो जान जाती हूँ हेलो बोलने से भी मगर जितने श्रोता सुन रहे उन लोग को पता नहीं रहेगा।
1: जी जी
0: आप लोग से सुनना चाहेंगे ना अपना नाम इसीलिए।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम नाम तो सुनते क्योंकि मैडम जो जानते हैं श्रोता लगातार कार्यक्रम सुनते हैं तो वो तो जानते हैं पर अगर मान लो मोबाइल ऐप के माध्यम से और आप तो आपका श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि अब तो आकाशवाणी सिक्किम का चलन या कोई भी आकाशवाणी हो अब तो आप ऐसा अगर गूगल में जाके बोलेंगे ना लाइव रेडियो आकाशवाणी गांधोक तो वो लाइव भी आ जाता है मैडम गूगल
0: पे।
1: हाँ जी हाँ जी अब तो ये नहीं है कि हम कैसे इसको डाउनलोड करेंगे एप्स को और कैसे हम सुनेंगे कार्यक्रम बस अगर लाइव रेडियो आकाशवाणी बोलते ना कोई भी चलन का नाम तो बैठे बैठे अपने घर बैठे कहीं भी सुन सकते हैं मैडम।
0: ये तो अच्छी बात है जितने लोग को भी पता नहीं था तो आपने थोड़ा जानकारी भी दे दिया इसके लिए भी धन्यवाद आपको।
1: जी मैडम थैंक यू। तो आज कौन सा नंबर पे आ गए मैडम मैं
0: आज आप आ गए 10वें नंबर पर।
1: ओ मैडम आप तो उसी पर आज क्योंकि ट्रेन से बात हुई तो मैं आज वो गाना सुनूंगा एक गाना है फिल्म का नाम तो मेरे को मालूम नहीं है गाड़ी भूला रही क्योंकि डब्बे के 10वें नंबर पे आया तो इस गाड़ी के ऊपर ये गाना
0: यही ठीक रहेगा यही।
1: जी जी
0: तो किसको सुनाना चाहेंगे ये फिर
1: सबसे पहले तो आप है तो मेरा दोस्त है राकेश है भगवान सिंह परवान जी अभिनाथ जी रमेश प्रजापति जी है गोल्डी बाई है शिवा लोहार है और विमल है अमल है और संगीता जी आशुतोष देवनाथ और लाइव कॉलर रघुवीर पंडा के साथ तमाम श्रोता जिसका नाम भूल गया उन कॉलर।

0: हेलो हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: कौन कहाँ
1: मैं
0: से?
1: असम से बात कर रहा हूँ, सुतपा बटटरिया।
0: सुतपा जी, नमस्कार। सुतपा जी,
1: नमस्कार,
0: तो
1: आप
0: बजे
1: कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं?
1: मैं भी अच्छी हूँ। फोन लग रहा है, मैं अभी खुश रह रहा हूँ।
0: ओ, फोन लगने से और भी अच्छी हो गई ना
1: जी।
0: जी। सुतपा जी तो ऐसे भी बिजी रहती है ना काम में।
1: जी।
0: आज आज भी यही पूछेंगे, बनाया क्या है? हर एक बुधवार को मछली बनाते हैं ना।
1: आज तो मौसम नहीं है, दाल सब्जी।
0: ओ, दाल सब्जी। ओ,
1: आप आ
0: आज
1: जाइए तो खाना खा लिए।
0: दाल सब्जी नहीं खाएंगे, आपका हाथ का मछली ही खाएंगे। मुर्गा भी
1: नहीं
0: बनाते हैं क्या कभी? मुर्गा चिकन भी बनाते हैं क्या?
1: नहीं चिकन नहीं खाते, मछली
0: चिकन नहीं खाते, खाली मछली खाते हैं ना।
1: खाते।
0: बाप रे, तब तो।
1: मैं भी तो ब्राह्मण है जी।
0: ओ, ब्राह्मण है। बाप रे, फिर तो चिकन बोलने से भी डर लगा, माफ करिएगा। चिकन बोल तो सकते हैं ना।
1: जी। मैं भी मटन खाते हैं, मटन खाते हैं,
0: ओ, मटन खाते हैं।
1: मटन खाते हैं। जा
0: तो उधर आएंगे तो सुतपा जी के हाथ के मछली और मटन खाएंगे।
1: जाइए
0: खाने के लिए आएंगे एक दिन।
1: सबके लिए, सब
0: सबके सबको लेकर आएंगे।
1: करने करा दी।
0: एक पूरा मटन लाने से भी कम हो जाएगा फिर
1: जी।
0: जी। तो बताइए, गाना कौन सा सुना है आज?
1: सुना सुना दीजिए। हेलो ना जान तेरी तुमको छोड़ जाती हूँ, ये गाना सुना दीजिए। कह रहे थे आपके लिए, रुस्तम सर के लिए, उन्हें उपमा भट्टाचार्य, अजीत चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, जयसिंह लतेरा, अशोक पति, रत्न बहादुर प्रधान, पुरुषोत्तम कुमार, लोकंद वर्मा, राम जी
0: फोन
1: की।
0: ऐसे फोन करते रहेगा। धन्यवाद सुतपा जी।

0: The Sports Scan.
1: और अब रुक कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। मकाओ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशा रानी बरुआ, थरुण मनेपल्ली और अनमोल खरब ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में ईशा ने यू हुंग को 21-16, 19-21, 21-14 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।

0: श्रोता यतिन्जेल सुनिरहनु भएको थियो कार्यक्रम सुर संसार अन्तर्गत शिवकुमार शर्माद्वारा रचना सुर संसार। श्रोता अब सुनाउनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समाचार सन्ध्या अन्तर्गत क्रमशः हिन्दी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार सातवीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप

का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे

0: गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों एनआरआई पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एनआरआई विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
4: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रूपये पर बंद हुआ।
2: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉ कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्स

0: इमेजिन 1,78,000 crore में प्राइवेट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट द सेम एज व्हाट वाज द टोटल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 2014।
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इस 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की, जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास है, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनी को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहां। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इम्पोर्टर हुआ करते थे, इम्पोर्टर अभी हम रहेंगे, 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको कम्प्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे कम्प्लीट नहीं हो जाएंगे, हम इम्पोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं कि स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
0: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के DRDO ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, वो फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसका फैक्ट्री बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है, 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट फॉर मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, वे आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, L&T हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 1,78,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इट इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो, जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो, और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो, तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने Mk1 बनाया है, आपने हमने ही बनाया हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको Mk2 बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस सप्लाई उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें

0: ग्राउंड है जहां पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटीरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, IITs है, वहां के बच्चे बड़े होशियार हैं, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स हैं वो आगे आते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम यहाँ, जैसे आप कह रहे हैं, वी आर द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कहीं एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी। ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सिकल्स हो या स्टिल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा दो साल हो गए, दो इंजन नहीं आ पाए, दो साल हो गए। क्यों? हमने उनके भरोसा, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे। इसमें लगे अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर MCA प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब चार गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इम्पोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल, आर्टिलरी गन इम्पोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप हैं वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंत और उसके 3 आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इम्पोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में, टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इम्पोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है, तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी UAV बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इम्पोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में 3 कंपनियों को, 3 कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बियां हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की 2 श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था 8-10 साल हमें पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी, आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
0: ड्रोन वॉर पे अब समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडाप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पर पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करके, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इस दिन आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें, जरूर चाहे स्टार्टअप्स के पास आपके पास या नेविगेशनल डिस्ट्रिक हो या उसके सीकर हो या उसके पास फोटोग्राफिक देते, बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप्स के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप्स को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे, कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा, ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम ये हमारे लिए है, इसमें आत्मनिर्भरता तो भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GFQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे हैं, और वो उस बात का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशंस है, तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसमें रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए, UAVs को मद्देनजर रखते हुए, न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे स्पेस है, नेविगेशनल है, जो जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिलकर के अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, जो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम भारत के अंदर बनाए, और इसको इनिशियली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है इनिशियली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है?
2: इसके कई सारे आंसर हैं। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी, फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और ये मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूं, कारीगर की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी, और सबसे बड़ी बात अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे, जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा, मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी जब आप ग्रो करेंगे, तो जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज टास्क, तो आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, और वो ट्रेन्ड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो आईटीआई है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेन मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है। कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी। जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है। और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा। वो जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस।

0: लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई उसकी, कुछ इम्पोर्ट होता है, कुछ यहां बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए। हमने बहुत अच्छा काम किया, 1,78,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है। और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए। 30 साल लग गए जी, 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहां कि आपने ये बनाना है। देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कोई सिखाएगा नहीं, कोई, देयर इज नो टीचर। आप खुद ही टीचर हो तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे, 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी, बिल्कुल लगते हैं। तेजस को 33 साल लगे जी, बिल्कुल लगते हैं। परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी, बिल्कुल लगते हैं इतने। हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D, वेरी स्ट्रांग R&D, अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम। नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है। नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई। रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हुए, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा। नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रांग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है। जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है, लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
2: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके, कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आले दर्जे का बनाना है। अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बनाया है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर अगले 5 साल के अंदर। एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है, मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूं ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है, तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और YouTube चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है